إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله

سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم

0: वोट पे डाका मारने के लिए अपने चौधरी यासीन के हाँ ये 30 पोलिंग स्टेशन पे डाका मारा, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं, और सबसे भरकर इसका नुकसान इस मुल्क का, इस रियासत का, अवाम का हो रहा है, और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कैंडिडेट के गाँव में 30 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा किया जाए? क्या हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं? वरना मैं भी सदर सरदारी का बेटा हूँ, मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूँ। मैं सियासत अगर करना चाहता हूँ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह ना करना चाहता हूँ। मुझे मजबूर ना करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे।
1: आजाद कश्मीर के चूंड नतीजन पीपल्स पार्टी नवाज ली के एक बेरो बीहर आमू सामू आनी छो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जा नून लीग मथा आजाद कश्मीर में बदतरीन दांधलन जा इल्जाम। नतीजा कबूल का बेनकार बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद में कारकुनन के खिताब कंदे चे त कौमी मफाद के पोते करे नून लीग के मफाद के तरजीह देने वो सिलसिलो नओ ना। रियासत के हाने फैसलो करणो पवंदो त कौमी मफाद अहम आए या नून लीग जो मफाद अहम आए। मरहलेवार चूंड दांधलन लाई करायूं वयूं। आजाद कश्मीर में पांजे वोटन जो तहफुज कंदुस ए अवां के पांजो हक वठी दींदुस। पोए ते हटण वारो नाया नई के आडो झुकंदुस। पुरअमन रहण चाहियां थो न त आ बि सदर जरदारीअ जो पुट मीर शाहनवाज भुट्टो ए मीर मुर्तजा भुट्टो जो भाणे जाया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो वारी सियासत करण चाहियां थो, मूंखे वधीक मजबूर न कयो वञे।
2: अल्हम्दुलिल्लाह कल हमें 13 में से 9 नशिस्तें मिल गई हैं। पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ने अभी अपनी स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहां धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहां पर आपने धांधली का इल्जाम लगाया। सूबा सिंध एक वाहिद सूबा है जहां तकरीबन 17 साल से मुसलसल एक जमात की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और ये सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से रोने धोने से 17 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था, और पीपल्स पार्टी ही के दौर में वहां के हालात खराब हुए। आप अपने सूबे की कारकर्दगी पर, अपनी कारकर्दगी पर गौर करें, आप अपनी खुद एहतसाबी करें। मैंने ये कहा था कि जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे, तो आप इस चीज पे जरूर अपनी खुद एहतसाबी करें। आपकी कोई कारकर्दगी नहीं, आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं, आपकी कोई गवर्नेंस नहीं, आपका कोई मंशूर नहीं, सवाए जातियात पे बात करने के या लोगों को ताने देने के लिए।
3: बिलावल साहब इलेक्शन जो फैसलो रियासत न पर अवाम कंदो आए। तव्हां खे पंहिंजे बयाने कम ते ध्यानु ॾियणु घुर्जे। बिलावल भुट्टो विसारे वेठो आहे त हिकु साल खां आज़ाद कश्मीर में सदन हुकूमत आहे। पीपल्स पार्टी जे दौर में आज़ाद कश्मीर जूं हालतूं ख़राब थियूं। सियासी बयाननि ऐं रोइण पिटण सां कुझु न आहे थींदो। कामयाबी लाइ कारकर्दगी एजेंडा ऐं बयानियूं हुजणु घुर्जे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन खे जवाबु। मरियम नवाज़ चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान जे चूंडुनि में PP जे कामयाबी ते वज़ीर आज़म वधायूं ॾिनियूं। आज़ाद कश्मीर में कामयाबी न मिलण ते बिलावल भुट्टो धांधली जो इल्ज़ाम मणे छॾियो। सिंध में लाॻीतो 17 साल हुकूमत कंदड़नि वटि ॿुधाइण लाइ कुझु न आहे। रोड टुटल आहिनि, अवाम ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत घुरे पियो। सिंध जा रोड ऐं गवर्नेंस ठीक करियो। कारकर्दगी हुजे हा त PP चेयरमैन खे तनक़ीद जो वक़्तु न मिले हा।
4: पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का TV पे एक रिकॉर्डिंग खिताब सुना, वो एक मिसाल है कि ये चोरी प्रोसेसिंग ना चोरी, और जिस तरीके से वहां पे मैंडेट चोरी हुआ, खुलेआम असली की नुमाइश की गई और पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया, जिस तरीके से खैराती इकतदार पे PMLN की हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 पे वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि आज भी जो इलेक्शन हुए जो फैसला होता है वो आवाम करती है। अगर आपने कोई तरक्याती काम किया तो उसका फैसला आवाम ने करना है, सिंध में अगर तरक्याती काम किया तो उसका फैसला आवाम ने करना है। क्या वजह है कि आपको 2024 में बदतरीन और तारीखी शिकस्त नसीब हुई और सिंध में पीपुल्स पार्टी को हर साल हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा सीटें मिलती है। सेहत की सहूलियात सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है तो वो सूबे सिंध में है। सूबे की सड़कें हैं वो बेहतर हैं और जितने भी वफाकी हुकूमत की सड़कें हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और ज्यादातर पीएमएल एंड फेडरल गवर्नमेंट में रही है और उन्होंने हमेशा जो है वो सिंध को इग्नोर किया। और मैं एक और खुला चैलेंज करता हूं, आप कोई भी पंजाब का हल्का आप चुन लें, आप इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहिबा चीफ मिनिस्टर साहिबा और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब की किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें। हम भी आप इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी भी सीट से इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखेंगे सिंध की आवाम हमें इलेक्शन में वोट के देकर कामयाब करेंगे और पंजाब की आवाम आपको किसी भी हल्के से कामयाब नहीं करेंगे। देखेंगे पंजाब की आवाम आपसे किस हद तक नफरत करते हैं, जबरदस्ती इकतदार की कुर्सियों पर आप बैठे हुए हैं और ऊपर से अपने आपको जाहिर करते हैं। मैं वही कहूंगी आप लोग वो किराएदार हैं जो किराए पे आए और इकतदार में बैठे और अपने आपको मालिक मकान समझ के बैठे।
1: सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम वजीर आला पंजाब के इस्तीफा डई बीहर चूंड वेहण जो चैलेंज। शर्जील मेमण चयो आहे त मरियम नवाज़ उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾे बीहर चूंड खटी ॾेखारे, हू बि सिंध जे कंहिं बि तक तां इस्तीफ़ा ॾेई चूंड विढ़ंदा। ख़बर पइजी वेंदी त पंजाब जो आम तव्हां सां केतिरी नफ़रत करे थो। पंजाब में अवां खे खैरियाती फारम 47 तहत हुकूमत मिली आहे। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन दांदली करे पीपल्स पार्टीअ मैंडेट चुरायो वियो। तव्हां पंहिंजी भेट पीपल्स पार्टीअ सां न करियो, पीपल्स पार्टीअ जी क़यादत अवाम लाइ क़ुर्बानीूं ॾिनियूं आहिनि। तव्हांजी क़यादत सदाई ॾुखे वक़्त में मुआदा करे मुल्क मां भॼी वई। पुरतशद जथे आज़ाद कश्मीर चूंडुनि खे तकरारी बनाइण जी नाकाम कोशिश कई, अवाम शरपसंद अंसरनि खे मुकमल रद्द करे छॾियो। इतलात वारे वफ़ाकी वज़ीर अता तारण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, संदसि चवण हो त पाबंदी मड़ियल ज्वाइंट एक्शन कमेटीअ खां आज़ाद कश्मीर जूं पुरअमन चूंडूं अज़म न पयूं थियनि। कंहिंखे बि धोके ऐं तशद जे ज़ोर ते पंहिंजे मर्ज़ी माण्हू न ॾिनी वेंदी। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चवण आहे त एहतजाज बिना जवाज़ आहे। 38 मां 37 मुतालबा मंज़ूर थी चुका आहिनि पर पुरतशद तहरीक में मुल्की ऐं गैर मुल्की अंसर मुलविस आहिनि। पुरतशद जथन अमरीकी M4 गन क्लाशन कोप्स ऐं इंस्पायर्स इस्तेमाल कया, उहे एहतजाज कंदड़ नफ़र विगोड़ी आहिनि। आज़ाद कश्मीर हुकूमत कानून जी ताक़त इस्तेमाल कंदी।
3: आलमी मार्केट में पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में लात जो हुकूमत अवाम खे फ़ाइदो न ॾिनो। तेल अघनि में ॿीहर वाध, पेट्रोल जो फी लीटर अघु 1.63 रुपया ऐं डीज़ल 1.55 रुपया महांगो। पेट्रोल जी नई क़ीमत 385.81 रुपया फी लीटर ऐं डीज़ल जो नओं अघु फी लीटर 388.38 रुपया आहे।
1: उर्दन में अमरीकी अॾनि ते ईरान मिज़ाइल हमला कया आहिनि, अमरीकी फ़ौज जो इल्ज़ाम। अमरीकी सेनकाम जो चवणु आहे त अमरीकी फ़ौज चौकस आहे, ईरान तरफ़ां छॾियल समूरा मिज़ाइल रोकिया विया आहिनि। अमरीकी मीडिया जो चवणु आहे त पासदारनि इनकलाब अमरीकी अॾनि ते केतिरा ई मिज़ाइल छॾिया आहिनि। अमरीकी इख़्तियारनि मूजिबि ईरान आबिरा हरम ते गैर ज़रूरी मुतालबा करे रहियो आहे। ईरानी मुतालबनि खे ओमान, अमरीका ऐं आलमी बिरादरी रद्द करे छॾियो आहे। अमरीका ऐं ईरान विच में जंहिं मुआदे ते ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि उन में को टेक्स या फेक्स शामिल न आहे। नेतन्याहू चाहे थो त आ सदाई जंग में फाथल हुजां। ईरान जे एटमी सरगर्मियुनि बाबति मूंखे इसराइली वज़ीर आज़म जी ॼाण जी ज़रूरत न आहे। अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप जो फॉक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू, डोनल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जे मामले ते मौक़ुफ़ इंतिहाई सख़्तु आहे। मुआदो न थियो त ईरान में मिशन मुकमल कयो वेंदो। ईरान खे हाणे मुआदनि जी भञकड़ी करण न ॾिनी वेंदी। सामूंडी लंग हर्म्स ते अमरीका जो मुकमल कंट्रोल आहे। ईरान जे पावर प्लांट्स ऐं पुलनि ते हमलनि जो को इरादो न आहे।

0: वेझो पहुची विया आहिनि। परडे॒ही ख़ाबरू इदारे फॉक्स न्यूज़ जी दावा, ख़ाबरू इदारे जी रिपोर्ट में चयो वियो आहे त पाकिस्तान कतर ऐं मिस्र हमरस गामज़े इंतिज़ामी तरीक़े ते इख़्तिलाफ़ ख़तम करण जी कोशिश में रुधल आहिनि। ईरान ऐं ओमान टियाकड़ी कंदड़नि पारां पेश कयल तजवीज़नि सां इतफ़ाक़ करे चुका आहिनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हतमी फ़ैसिलो कंदो। ईरान सालसन ज़रिए अमरीका जूं पहुचायल तजवीज़ूं रद्द करे छॾियूं। नायब ईरानी परडे॒ही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादीअ चयो आहे त अमरीका सां सालसन ज़रिए ॻाल्हियूं इस्लामाबाद में थियूं हुयूं, जेकी अमरीका जे गैर ज़रूरी मुतालबनि सबबि नाकाम थियूं, जंहिं बाद अमरीका वफ़द इस्लामाबाद मां वापसि हलियो वियो। जंहिं बाद ईरान बि ॻाल्हियूं जारी रखण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर न कई। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमरीका तहरान जी ॿीहर नाकाबंदी कई त फ़ैसिले खे जंग में वाद सम्झो वेंदो।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां अमरीकी कांग्रेस ऐं वापारी वफ़दनि जी मुलाक़ात। इस्लामाबाद में मुलाक़ात दौरान ॿ तरफ़नि लाॻापनि लाइ कई तोड़े आलमी सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। शहबाज शरीफ अमरीकी सदर लाइ नए ख़्वाहिशनि जो इज़हार कंदे चयो आहे त डोनाल्ड ट्रंप जी मुदाख़लत सां पाकिस्तान ऐं भारत विच में जंग बधी थी। पाकिस्तान वापारी सीड़पकारी ज़राइत आई टी मदनियात ऐं तवानाई जे शोबनि में अमरीका सां सहकार वधीक मज़बूत करण जो ख़्वाहिशमंद आहे।
0: कोयत जो परडे॒ही वज़ीर ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते पाकिस्तान पहुची वियो। परडे॒ही वज़ीर इस्लामाबाद एयरपोर्ट ते पाकिस्तान जे परडे॒ही वज़ारत जे अमलदारनि इस्तक़बाल कयो। परडे॒ही वज़ारत मूजिबि कोयत जो परडे॒ही वज़ीर इसाक डार जी दावत ते पाकिस्तान आयो आहे।

0: शायरनि जे सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाए जो 283 सालियानो उर्स अॼु शुरू थींदो। भिट जी नगरी खे कुंवार जीअं सिंगारो वियो। सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम मुल्क जे कुंड कुड़छ मां पांधेड़नि जे आमन। सूबे में अॼु आम मोकल हूंदी। सिंध जो गवर्नर मज़ार ते हाज़िरी भरे उर्स जो इफ़्ताह कंदो। पंजाब जो गवर्नर बि सुगढ़ कचहरी में शिरकत कंदो। ॿिए ॾींहं ते KPK जो गवर्नर ऐं आख़िरी ॾींहं वारनि तक़रीबुनि में सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ख़ासि महिमान तौरु शरीक थींदो। मलाखड़े ऐं घोड़नि जी डोड़ जा मैदान सजाया विया।
1: कराचीअ में तारीख़ी विरसे जे 434 इमारतनि समेत 588 ख़तरनाक इमारतूं मौजूदु हुजण जो इनकशाफ़। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां 59 ख़तरनाक इमारतूं माण्हुनि खां ख़ाली कराइण ऐं 39 किराइण जी मंज़ूरी ॾियण जी दावा। चेयरमैन निसार खोड़ो जी सदारत हेठि पब्लिक अकाउंट्स कमेटीअ जे इजलास में मेंबरनि समेत लाॻापियल अमलदारनि जी शिरकत। PIC तारीख़ी वरसे जे ख़तरनाक इमारतनि बाबति रिपोर्ट ऐं हेरिटेज कमेटीअ खे तलब करे वरितो। मज़ारे क़ाइद जे भरपासे कानून जे ख़िलाफ़ ठहियल वॾियुनि इमारतुनि बाबति रिपोर्ट बि तलब कई वई। कराचीअ में गैर क़ानूनी हाउसिंग स्कीमुनि हलाईंदड़ बिल्डरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जी बि हिदायत।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: के वोट पे डाका मारने के लिए अपने चौधरी यासीन के हाँ ये 30 पोलिंग स्टेशन पे डाका मारा, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं, और सबसे बदकर इसका नुकसान इस मुल्क का इस अवाम का हो रहा है, और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कैंडिडेट के गांव में 30 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा किया जाए? क्या हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं? वरना मैं भी सदर सरदारी का बेटा हूँ, मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूँ। मैं सियासत अगर करना चाहता हूँ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूँ। मुझे मजबूर ना करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे।
1: आजाद कश्मीर जे चूंड नतीजन पीपल्स पार्टी ए नवाज लीग के एक भेरो बी रामो सामू आने छो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जा नून लीग मथा आजाद कश्मीर में बदतरीन धांधलिन जा इल्ज़ाम, नतीजा कबूलन का भी इनकार। बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद में कारकुनन के खिताब कंदे तो कौमी मुफाद के पोते करे नून लीग के मुफाद के तरजीह देने वो सिलसिलो नओ ना। रियासत के हाँ फैसलो करो पवो तो कौमी मुफाद अहम है या नून लीग जो मुफाद अहम है। मरहलेवार चूंड धांधलिन लाई कराई व्यूं आजाद कश्मीर में पैंजन वोटन जो तहफुज कंदस, अवां के अवां जो हक वठी दींदस, पोते हटन वारो ना आया न ही कहे आडो झुकंदस। पुरअमन रहन चाहिया तो न त आऊं वे सदर जरदारी जो पुत्र मीर शाहनवाज ए मीर मुर्तजा भुट्टे जो भाण जो आया। शहीद बेनजीर वारी सियासत करण चाहिया तो मुखे वधिक मजबूर न कयो वने।

0: बिलावल साहब, इलेक्शन जो फैसलो रियासत न पर आवाम कंदो आहे, तव्हां खे पंहिंजे बयानीअ ऐं कम ते ध्यानु ॾियणु घुर्जे। बिलावल भुट्टो विसारे वेठो आहे त हिकु साल खां आज़ाद कश्मीर में संदन हुकूमत आहे। पीपल्स पार्टीअ जे ई दौर में आज़ाद कश्मीर जूं हालतूं ख़राब थियूं। सियासी बयाननि ऐं रोइण पिटण सां कुझु बि नाहे थींदो। कामयाबीअ लाइ कारकर्दगी एजेंडा ऐं बयानो हुजणु घुर्जे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन खे जवाब। मरियम नवाज़ चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान जे चूंडनि में पीपी जी कामयाबीअ ते वज़ीर आज़म वाधायूं ॾिनियूं। आज़ाद कश्मीर में कामयाबी न मिलण ते बिलावल भुट्टो धांधलीअ जो इल्ज़ाम मणे छॾियो। सिंध में लाॻीतो 17 साल हुकूमत कंदड़नि वटि ॿुधाइण लाइ कुझु बि नाहे। रोड टुटल आहिनि, आवाम ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत घुरे पियो। सिंध जा रोड ऐं गवर्नर्स ठीक करियो। कारकर्दगी हुजे हा त पीपी चेयरमैन खे तनक़ीद जो वक़्तु न मिले हा।
1: पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का टीवी पे एक रिकॉर्डेड खिताब सुना, वो एक मिसाल है कि जी एक चोरी प्रोसेसी ना चोरी, और जिस तरीके से वहां पे मैंडेट चोरी हुआ, खुलेआम असली की नुमाइश की गई और पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया, जिस तरीके से खैराती इकतदार पे पीएमएलएन की हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि आज भी जो इलेक्शन हुए जो फैसला होता है वो आवाम करती है। अगर आपने कोई तरक्याती काम किया तो उसका फैसला आवाम ने करना है। सिंध में अगर तरक्याती काम किया तो उसका फैसला आवाम ने करना है। क्या वजह है कि आपको 2024 में बदतरीन और तारीखी शिकस्त नसीब हुई, और सिंध में पीपुल्स पार्टी को हर साल हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा सीटें मिलती हैं। सेहत की सहूलियात सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है तो वो सूबे सिंध में है। सूबे की सड़कें हैं वो बेहतर हैं, और जितने भी वफाकी हुकूमत की सड़कें हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और ज्यादातर पीएमएलएन फेडरल गवर्नमेंट में रही है और उन्होंने हमेशा जो है वो सिंध को इग्नोर किया। और मैं एक और खुला चैलेंज करता हूं, आप कोई भी पंजाब का हल्का आप चुन लें, आप इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहिबा चीफ मिनिस्टर साहिबा, और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब की किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें। हम भी आप इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी भी सीट से इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखेंगे सिंध की आवाम हमें इलेक्शन में वोट के देकर कामयाब करेंगे, और पंजाब की आवाम आपको किसी भी हल्के से कामयाब नहीं करेंगे। देखेंगे पंजाब की आवाम आपसे किस हद तक नफरत करते हैं। जबरदस्ती इकतदार की कुर्सियों पर आप बैठे हुए हैं और ऊपर से अपने आप को जाहिर करते हैं। मैं वही कहूंगी आप लोग वो किराएदार हैं जो किराए पे आए और इकतदार में बैठे और अपने आप को मालिक मकान समझ के बैठे हैं।
0: सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण वज़ीर आला पंजाब खे इस्तीफ़ा ॾेई ॿीहर चूंड विढ़ण जो चैलेंज ॾेई छॾियो। शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त मरियम नवाज़ उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई ॿीहर चूंड खटे ॾेखारे, हू बि सिंध जे कंहिं बि तक तां इस्तीफ़ा ॾेई चूंड विढ़ंदा। ख़बर पइजी वेंदी त पंजाब जो आवाम तव्हां सां केतिरी नफ़रत करे थो। पंजाब में अव्हां खे ख़ैराती ऐं फारम 47 तहत हुकूमत मिली आहे। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली करे पीपल्स पार्टीअ जो मैंडेट चोरायो वियो। तव्हां पंहिंजे हेठि पीपल्स पार्टीअ सां न करियो। पीपल्स पार्टीअ जी क़यादत तमाम लाइ क़ुर्बानीूं ॾिनियूं। तव्हांजी क़यादत सदाई ॾुखे वक़्त में मुआहिदा करे मुल्क मां भॼी वई। पुरतशद जथे आज़ाद कश्मीर चूंडनि खे तकरारी बणाइण जे नाकाम कोशिश कई। आवाम शरपसंद अनसरनि खे मुकमिल तौर रद्द करे छॾियो। इतलात वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, संदसि चवण हो त पाबंदी मणियल ज्वाइंट एक्शन कमेटी खां आज़ाद कश्मीर जो पुरअमन चूंडूं हज़म न पियूं थियनि। कंहिंखे बि दोखे ऐं तशद जे ज़ोर ते पंहिंजी मर्ज़ी मणण न ॾिनी वेंदी। मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी जो चवणु आहे त एहतजाज बिना जवाज़ आहे। 38 मां 37 मुतालबा मंज़ूर थी चुका आहिनि। तशद तहरीक में मुल्की ऐं गैर मुल्की अंसर मुलविस आहिनि, पर तशद जथन अमेरिकी एम क्लाशनकोफ इस्तेमाल कया। उहे एहतजाज कंदड़ न पर वगोरी आहिनि। आज़ाद कश्मीर हुकूमत कानून जी ताक़त इस्तेमाल कंदी। आलमी मार्केट में पेट्रोल शयुनि जे अघनि में लात जो हुकूमत आवाम खे फ़ाइदो न ॾिनो। तेल अघनि में ॿीहर वाद, पेट्रोल जो फी लीटर अघु 1.63 रुपया ऐं डीज़ल 1.55 रुपया महांगो। पेट्रोल जी नई क़ीमत 385.81 रुपया फी लीटर ऐं डीज़ल जो नओं अघु फी लीटर 388.38 रुपया मुक़ररु। में अमेरिकी अॾनि ते ईरान मिज़ाइल हमला कया आहिनि। अमेरिकी फ़ौज जो इल्ज़ाम अमेरिकी सेनेट खां चवणु आहे त अमेरिकी फ़ौज चौकस आहे। ایران طرفا چھڈل سمورا میزائل روکیا ویا ہے نا امریکی میڈیا جو چون ہے تو پاسدار انقلاب امریکی اڈن تے کیترا ہی میزائل چھڑیا ہیں امریکی اختیارن موجب ایران آبن ہرمز سے غیر ضروری مطالبہ کرے رہا ہے ایرانی مطالبن کے عمان امریکہ عالمی برداری رد کرے چھڑیا ہے امریکہ ایران وچ میں جہ معاہدے تے گالیوں ہلی رہی ہیں ان میں کو بھی ٹیکس یا فیس شامل نہ ہے

नितिन आहूजा है तो आऊँ सदाई जंग में फातल हुजा। ईरान के एटमी सरगर्मी बाबत मुख्य इसराइली वजीर आजम की जान की जरूरत ना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरान के मामले से मौकफ इंतहाई सख्त है। मुआदो न थो तो ईरान में मिशन मुकम्मिल ईरान के हाँ मुआदन की भनकड़ी कर डी वी सामुंडी लंग हरमज से अमेरिका जो मुकम्मिल कंट्रोल है। ईरान के पावर प्लांट्स पुलन से हमलन को कोई इरादो ना है।

अमेरिका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त जे बहालीअ वेझो पहुची विया आहिनि। परडे॒ही ख़बरू इदारे फॉक्स न्यूज़ जे दावा ख़बरू इदारे जी रिपोर्ट में चयो वियो आहे त पाकिस्तान कतर ऐं मिस्र हरमुख लंग जे इंतिज़ामी तरीक़ेकार ते इख़्तिलाफ़ ख़तम करण जी कोशिश में रधल आहिनि। ईरान ऐं ओमान टेकारी कंदड़नि पारां पेश कयल तजवीज़नि सां इतफ़ाक़ करे चुका आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हतमी फ़ैसिलो कंदो। ईरान सालसन ज़रिए अमेरिका जूं पहुचायल तजवीज़ूं रद्द करे छॾियूं। नायब ईरानी परडे॒ही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त अमेरिका सां सालसन ज़रिए ॻाल्हियूं इस्लामाबाद में थियूं हुयूं, जेके अमेरिका जे ग़ैर ज़रूरी मुतालबनि सबबि नाकाम थियूं, जंहिं बाद अमेरिकी वफ़द इस्लामाबाद खां वापसि हलियो वियो, जंहिं बाद ईरान बि ॻाल्हियूं जारी रखण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर न कई। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका तेहरान जी ॿीहर नाकाबंदी कई त फ़ैसिले खे जंग में वाद सम्झो वेंदो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां अमेरिकी कांग्रेस ऐं वापारी वफ़दनि जी मुलाक़ात इस्लामाबाद में। मुलाक़ात दौरान ॿिनि तरफ़नि लाॻापन इलाक़ाई तोणे आलमी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। शहबाज शरीफ अमेरिकी सदर लाइ नई ख़्वाहिशुनि जो इज़हार कंदे चयो आहे त डोनाल्ड ट्रंप जी मुदाख़लत सां पाकिस्तान ऐं भारत विच में जंग बंदी थी। पाकिस्तान वापारी सीड़पकारी ज़राइत आई टी मैदनियात ऐं तवानाई जे शोबनि में अमेरिका सां सहकार वधीक मज़बूत करण जो ख़्वाहिशमंद आहे।

शायरनि जे सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भुटाई जे 283 उर्स जूं तयारियूं शुरू थी वियूं आहिनि। सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी मज़ार ते चादर चाढ़े उर्स जो इफ़्तिताह कयो। सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम कया विया आहिनि। मुल्क जे कुंड कुर्छ मां पांधीड़नि जी आमद जारी आहे।

0: हिक वण सिंध मरजे नाउ मोम जारी केटी न्यूज ऐं कावस जे सॾु ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मोम जारी मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी आहे सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बि वरचाओ
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
4: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
5: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
6: अजरक के रंगों से रंगी
7: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
6: सिंध के दिल से निकली आवाज
7: GFM 88 Network सिंध

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

Thank you.

लगारी भा।

ਕਚਾ ਕਾਹ ਕੰਧ ਨਾ ਆਇਓ ਪੂਰਨ ਨੇ

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: किताब पढ़ी वल रोवल खौफ तनु हिक रब दे रातो डी हां डरी वल ए सब गालियां ए हां जे हां दे कर कन सुनी वल ए सच लईए तो मकसद मूल न लहस रुगो मूजा विच त मरी वल
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

नेतन्याहू चाहे थो त आउं सदाई जंग में फाथल हुजां। ईरान जे एटमी सरगर्मियुनि बाबति मूंखे इसराइली वज़ीर आज़म जी ॼाण जी ज़रूरत नाहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो फॉक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू। डोनाल्ड ट्रंप

चयो आहे त ईरान जे मामले ते मौक़िफ़ इंतिहाई सख़्तु आहे। मुआदो न थियो त ईरान में मिशन मुकमिल कयो वेंदो। ईरान खे हाणे मुआदनि जी भञकड़ी करण न ॾिनी वेंदी। सामूंडी लंघ हर्मुज़ ते अमेरिका जो मुकमिल कंट्रोल आहे। ईरान जे पावर प्लांट्स ऐं पुलनि ते हमलनि जो को बि इरादो नाहे। अमेरिका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त जी बहालीअ जे वेझो पहुची विया आहिनि। परॾेही ख़बरू इदारे फॉक्स न्यूज़ जी दावा ख़बरू इदारे जी रिपोर्ट में चयो वियो आहे त पाकिस्तान, कतर ऐं मिस्र हर्मुज़ लंघ जे इंतिज़ामी तरीक़ेकारनि ते इख़्तिलाफ़ ख़तमु करण जी कोशिश में रुधल आहिनि। ईरान ऐं उमान टहिकाड़ी कंदड़नि पारां पेश कयल तजवीज़नि सां इतफ़ाक़ करे चुका आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हतमी फ़ैसिलो कंदो। ईरान सालसन ज़रिए अमेरिका जूं पहुचायल तजवीज़ूं रद्द करे छॾियूं। नायब ईरानी परॾेही वज़ीर काज़िम गरीबाबादी चयो आहे त अमेरिका सां सालसन ज़रिए ॻाल्हियूं इस्लामाबाद में थियूं हुयूं, जेके अमेरिका जे ग़ैर ज़रूरी मुतालबनि सबबि नाकाम थियूं, जंहिं बाद अमेरिकी वफ़द इस्लामाबाद खां वापसि हलियो वियो, जंहिं बाद ईरान बि ॻाल्हियूं जारी रखण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर न कई। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका तेहरान जी बीहर नाकाबंदी कई त फ़ैसिले खे जंग में वाद सम्झो वेंदो।

शहरनि जे सरताज हज़रत शाह बिलती बिठाई जी 283 उर्स जूं तकरीबूं शुरू। सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी मज़ार ते चादर चाढ़े उर्स जो इफ़्तिताह कयो। सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम कया विया आहिनि। मुल्क जे कुंड कुंज मां पांधीड़नि जी आमद जारी आहे। गवर्नर निहाल हाशमी चयो आहे त सकर हैदराबाद मोटरवे जी तामीर लाइ 6 अरब रुपया हड़प कंदड़ मटियारी जे भरपासे में ई आहिनि। सखर हैदराबाद मोटरवे जो कमु हिन साल शुरू थींदो।

चंदकोट में एस टी पी पारा गैर कानूनी तरसीलदारी आबादकारी खिलाफ डी सी ऑफिस आॾो धरणो। एस टी पी अॻवाणनि चयो त सिंध में धारी आबादकारीअ जी नेकालीअ लाइ इंतिज़ामिया रुगो सखणा ऐलान कया आहिनि, अञा ताईं नेकाली न ॾिनी वई आहे। 5 ॾींहनि अंदरि गैर कानूनी तौर तरसियल समूरा धारिया न कढिया विया त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। कड़ियो गवर भरसां जाम शाख खे गारो 50 फुट गारो सवें एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि ॻोठाणनि जो चवण आहे त हाफिज़ अब्दुल्ला समूह वटां जाम वाह शाख खे गारो लॻो आहे। आपाशी खाते खे आगाह कयो पर केरु नाहे पहुतो। पंहिंजी तहत पाणी गारो बंदि करे रहिया आहियूं। हिकु वण सिंध अमर जे नाओ मोम जारी केटीएन न्यूज़ ऐं कावस जे सॾ ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मोम जारी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी आहे। सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बि वर्चाउ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो।
2: त पोइ छा अञा ताईं फकीरी एनल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
1: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
2: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सां तैयार कयल फकीरी एनल जैसे क्रीम मुतासिर हंद ते जल्दी जज़ब थी। सूर, सोडियम, जिस्म जी नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्जिश का पोए छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
1: इस्तेमाल किए कजे।
2: रुगो मुतासिर हंद ते डीह में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए ऐं आराम जो एहसास वच ऐं बुध। जेकरे उमरे या हज ते वञण जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सां गॾु खणी वञजा।
1: वाह, पोए अॼु ई वठींदसि।
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GFM 90.8।

स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार सिंध की आवाज। और यू कैसे हैं आप? आई होप सुगी जी जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, मुझे सुन रहे हैं जहाँ जहाँ भी मौजूद है, बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है, पूरी पूरी एक बजे तक। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम। आपका और मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो आज भी जारी हो सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम वक्त की बात करें, वक्त हुआ जाता है जी 11:21 जो कि पाकिस्तान का मेरा वक्त है, तमाम तिलियों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बट नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीच को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बस ये खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलूब।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: सुने तो एफएम वाले करवाएंगे तो करूंगी ना।
1: एफएम वालों का मैं जाता में हूँ, जब नंबर मिल गया ना तो मैं उनको कहूँगा आपके, और वो जो यार जो सिद्रा है वो 3 प्रोग्राम करती है, वो जो नाजकुल है वो उसको छोड़ दे, नाजकुल भी और सिद्रा को भी, आपको 2 प्रोग्राम होने चाहिए।
0: ओके ठीक हो गया भाई, थैंक यू वेरी मच
1: भाई। मौला खुश रहे जानो बुद्रा जाए कसम भी।
0: अच्छा, इस गाने का टाइटल क्या है वैसे?
1: इसका टाइटल है ए मिठा सीने लाए सोले दिल बेताबा।
0: ए मिठा सीने ला, ओके शमन का गाना है?
1: जी जी शमन का है।
0: चले जबरदस्त, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज।

0: ओके जी, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हम रिसीव करने जा रहे हैं. एंड द नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: आरजी सईद बात कर रहा हूँ.
0: सईद, कौन सा गाना सुना रहे हैं हमें?
1: आरजी आपने ये तो पूछा ही नहीं, तो आप मेरा प्रोग्राम सुनते ही नहीं सुनते हैं, सबसे आप पूछ रही थी, मेरे तो आपने पूछा ही नहीं.
0: क्योंकि मुझे पता है आप सुन रहे होते हैं.
1: नहीं नहीं आरजी, मैं नहीं सुनता हूँ, क्योंकि आज वो आज आपका सेगमेंट चलेगा हरा भरा पाकिस्तान.
0: ओहो अच्छा.
1: और जी जी चलते को आपका 12 बजे से पीएम से 30 PM तक हरा भरा पाकिस्तान सेगमेंट होता है. और आप मंडे से चलते को आती है प्रोग्राम, ऐसे नहीं सुनता हूँ आज ही बता रहा हूँ. सही है ना?
0: अच्छा टाइमिंग्स पता है, सुनते नहीं है.
1: नहीं टाइमिंग पता है, प्रोग्राम नहीं सुनता हूँ ऐसे, इसलिए सही सही है ना आज.
0: ओके नहीं सही नहीं है, आप आपको सुनना चाहिए.
1: आरजी टाइमिंग जो नोट कर सकता है वो समय बगैर कैसे नोट कर सकता है आरजी.
0: हाँ ये बात है ना, ऐसा ना हो ना कि आप टाइमिंग नोटिस करके बस फिर सुनना ही बंद कर दें. मैं भूली नहीं, असल में टाइमिंग नोटिस करके अगर आप सुनना बंद कर दें तो मुझे क्या पता है ना.
1: ये बात है यार जी, बिल्कुल
0: तो ये है. अच्छा गाना सुनाना है?
1: हाँ गाना सुना ना यार जी, बिल्कुल
0: बस जल्दी से
1: गाना सुना रहा हूँ, फिर आप वो प्ले नहीं करती है ना बाद में.
0: अच्छा चले मुझे
1: टाइम भी थोड़ा जाकर पीछे बचा है, चलो फिर भी सुना लेता हूँ. एक तेरा इस है यार जी जो रेडियो सुनवा रहा है, एक तेरा इस है यार जी जो रेडियो सुनवा रहा है, वरना इसके पर रखा भला क्या है. एक तेरा यार जी तेरे है.
0: चालीस

अरे कॉल ड्रॉप हो गई. देखिए कितना अच्छा गाना चल रहा था. चलेंगे, कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच सईद भाई, आपने गाना बनाया, गाना सुनाया और बहुत अच्छा गाना. और ये वाला तो मैं सर्च नहीं कर सकती अब आप कौन सा गाना कहने वाले थे. खैर कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड है. हमारा सेगमेंट होने वाला है 12 बजे के बाद हरा भरा पाकिस्तान, और मैं प्ले कर रही हूँ आसिम अज़हर की आवाज़ को. इसको हम सुनेंगे, इन्जॉय करेंगे और इसी के साथ हम वापस आएंगे. और जब हम वापस आएंगे तो हम सेगमेंट के साथ आएंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

सखर हैदराबाद मोटरवे जा पैसा खाइंदड़नि जा पेरा मटियाई में मिलनि था। सिंधु में असांजो साहो आहे। सिंधु दरिया हज़ारनि सालनि खां वहंदो रहियो आहे ऐं वहंदो रहंदो। भिक्षा में हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई जे उर्स जो इफ़्तिताह करण बाद सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी चयो आहे त सखर हैदराबाद मोटरवे जी तामीर लाइ 6 अरब रुपया हड़प कंदड़ मटियारी जाई आहिनि। सखर हैदराबाद मोटरवे जो कमु हिन साल शुरू थींदो। भारत पाणीअ ते धाड़ो हुयो त मुंहुं तोड़ जवाबु ॾींदासीं। सिंध मां धाड़ियल राज नवाज़ शरीफ़ ख़तमु कयो हो।

सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे 283 उर्स जो तकरीब शुरू थी वही वान सिंह के गवर्नर डे लाशमी मज़ार ते चादर चाढ़े उर्स जो इफ्ताह कर सिक्योरिटी जाइन ताई सख्त इंतजाम किया गया है। मुल्क के कुट कुछ माँ पांदेड़न की आमद जारी है। कंदकोट में एसटीपी पारा गैर कानूनी तरसियल धारी आबादकारी खिलाफ डीसी ऑफिस आदो धरणो हयो। एसटीपी अगवाणन चयो त सिंध में धारी आबादकारी जी नेकाली लाइ इंतज़ामिया रुगो सखणा ऐलान कया, अञा ताईं नेकाली न ॾिनी वई आहे। पंजनि ॾींहनि अंदर गैर कानूनी तौर तरसियल समूरा धारिया न कढिया विया त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।

कड़ियो घंवर भरसा जाम शाह के पंजाह फुट गारो सवे एकड़न ते बीठल फसल पानी हेठ होठाणन जो चवण है हाफिज अब्दुल्ला समूह वटा जाम वाह शाह के घारो लगो है आपाशी खाते के आगा कर पर केर भी ना पोतो कहीं तहत पान घारो बंद करण में रुधल आयो एक मण सिंध अमर के नाव मोम जारी केटीएन न्यूज ए कावस के सर से सिंध के मौसमियाती तब्दीली का बचाने लाए वण लगान वाली मोम जारी मुख्तलिफ शहर में सियासी समाजी धुरन पारा वण लगान जो सिलसिलो जारी है सिंध के सरसब्ज रखने वाले अजम जो भी वर्जाओ

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में टे ज़बरदस्त हवा रॉयल इनवर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ आया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
3: त पई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
3: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थेल हंद ते आसानी सा जजब थी सूर आय सोडियम आराम पहुंचाण में मदद दे थी
2: सिर्फ चेल ऐ सूर लाए
3: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आय चेल जी तकलीफ सट धक लगण पुराणन जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे
2: इस्तेमाल किए कजे
3: मुतासिर थेल हंद ते डी में ब खां टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करियो जी हां फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
4: सिंध के माथे का झूमर
5: GFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: में आ गए. डिजिटल मार्केटिंग आपके पास है, जरिए फाइनेंस है, क्वालिटी इंश्योरेंस है, एंटरप्रेन्योरशिप के मौके हैं. सही, नौजवान को चाहिए कि वो किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को जो एक आम आदमी की प्रॉब्लम है, एक आम किसान की प्रॉब्लम है, आम जिंदगी में हमारे मसाइल हैं, उनको देखते हुए अपनी एग्रीटेक स्पेशलिस्ट, फूड प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट या फार्म मैनेजमेंट में ऐसी चीजें लेकर आए या कदम रखें जिससे अपना वो एक मकाम भी बना सके, आमदनी भी बना सके और पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके.
1: बिल्कुल. अच्छा, अगर हम माजी की बात करें थोड़ी सी, तो माजी में बहुत से नौजवान जो कि ज़राअत को एक मुश्किल काम और कम मुनाफा वाला जो शुबा है वो समझते थे. अब आप क्या देखते हैं कि जदीद ज़रई कारोबार, एग्री बिजनेस इस तासर को किस तरीके से बदल रहा है?
0: देखिए, अगर हम आम तौर पर भी देखें तो हम AI टेक्नोलॉजीज के बारे में देख रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजीज के बारे में सुन रहे हैं, IoT सेंसर्स के बारे में सुन रहे हैं, ई कॉमर्स हर तरफ चल रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन आ गई हैं. तो हमें दुनिया की भी सुकड़ गई, तो हमें कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है कस्टमर के साथ. हमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, किसान है, होलसेलर है, रिटेलर्स है, कमीशन एजेंट्स है, उन सबके दरमियान ऐसे चैनल बनाने ताकि कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन ज्यादा आसान हो जाए. फार्मर टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर सकता है, हर थोड़ी जो चीज नई होती है ना वो मुश्किल होती है, लेकिन बेहतर फैसले जब किसान को मिलेंगे ना, जब किसान एक ऐसा फैसला कर सकते हैं जिससे उसके नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा. सही, उसके जो लॉसेस होंगे वो कम होंगे, वो मार्केट को ज्यादा बेहतर तरीके से रीच कर सकेगा, तो वो क्यों नहीं अडॉप्ट करेगा? किसी को भी अपना नुकसान अच्छा नहीं लगता, उसको फायदा ही अच्छा लगता है. तो इनोवेशन हम ये समझते हैं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज अगर आप कर देंगे तो वो इनोवेशन नहीं, एक छोटी सी चीज जिससे किसी किसान या किसी स्टेक होल्डर की आसानी हो सकती है वो इनोवेशन है, उसको वो जरूर ओन करेगा. तो हम ये देखेंगे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दुनिया भर में लिया जा रहा है, पाकिस्तान में इसकी बहुत ज्यादा कमी है, तो हम जितना ज्यादा उस पर अडॉप्टेबल बनाएंगे वो ज्यादा बेहतर है. और वो करियर काउंसलिंग से भी आएगा, स्टूडेंट से भी आएगा, टीचर से भी आएगा, इंडस्ट्री से भी आएगा. तो जो गैप है ना हर एक स्टेक होल्डर के दरमियान, उसको दूर करना बहुत जरूरी है.
1: ओके, आजकल के जितने भी नौजवान हैं, अगर देखा जाए तो नौजवानों के लिए ज़रई टेक्नोलॉजी, एग टेक, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग और दीगर ज़रई ऑफ फार्म शुबों में कौन से नए मौके पैदा हो रहे हैं?
0: देखिए, स्टेट बैंक के बहुत सारे प्रोग्राम से बैंकिंग सेक्टर के अंदर एग्री फाइनेंसिंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, तो नौजवान उस सेक्टर को ले सकते हैं, एग्री एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. उसके अलावा जो मार्केटिंग के, फार्म मैनेजमेंट के शोबे हैं उनको देख सकते हैं, ई कॉमर्स गेटवेज जो है उसके अंदर आ सकते हैं, AI टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उसको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं.
1: ओके, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि बासलायत हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़रई कारोबार में आना चाहते हैं, लेकिन इन्हें इब्तदाई सरमाया, ज़मीन और खसूसी तरबियत जैसे मसाइल का सामना होता है. तो आप हमें ये बताइए कि इन रुकावटों के ऊपर जो है काबू पाने के लिए कौन से अमली इकदामात मौसर हल मौजूद हैं?
0: देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हर चीज कोई भी चीज बंदा माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, उसको सीखने की जस्तजू होना चाहिए. सही, हमारे नौजवान में शायद कमी कंसिस्टेंसी की है, हर चीज वक्त चाहती है, हर चीज को आपको समझना पड़ता है. तो आजकल बहुत सारा, आप सबसे पहले इंटर्नशिप्स बेहतर जगह पर करें, इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, एक्सप्लोर करें इंडस्ट्री को, फार्म्स को एक्सप्लोर करें, सक्सेस स्टोरीज को एक्सप्लोर करें. जिन लोगों ने सक्सेस हासिल करी है उन्होंने एक रात में सक्सेस हासिल नहीं करी है, उनकी एक जर्नी है, उस जर्नी को समझने की कोशिश करें. जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है उन अपॉर्चुनिटीज को आप अनदेखा नहीं करें. सही, आप चॉइसेस को अपनी प्रेफरेंस में तब्दील करें और जो आपको सबसे बेहतरीन चीज आपके सामने आ रही है उसको आप जज करें और उसको आप अडॉप्ट करने की कोशिश करें. दूसरी चीज ये कि जो बहुत सारे ट्रेडिशनल चीजें हैं जज करने की, उन पर ना करें. मिसाल पर वालदेन भी समझते हैं कि डॉक्टर, फलाना, CSS ऑफिसर, यही सारे कैरियर रह गए. नहीं, बिजनेस एग्रीकल्चर जो है बहुत बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है कैरियर पाथवे के तौर पर. इंसान खाना पीना नहीं छोड़ सकता, इंसान की जो अहम तरीन जरूरियात जिंदगी है वो सारी की सारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है. तो किसी भी तरह की आफत आ जाए, कुछ भी आ जाए दुनिया के अंदर, आपने देखा कोविड भी था तो इंसान ने खाना पीना नहीं छोड़ा. तो ये एक ऐसा कैरियर पाथवे है जिसके अंदर अगर नौजवान अगर आते हैं तो वो पैसा, अपनी कैरियर की ग्रोथ, हर चीज हासिल कर सकते हैं.
1: बिल्कुल. अच्छा, अगर देखा जाए इस वक्त बहुत सारे नौजवान ज़रई शुबे का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं रखते हैं, लेकिन एग्री बिजनेस

0: इसमें अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, तो आज से वो अपनी जो शुरुआत है वो कहाँ से और किस तरीके से कर सकते हैं?
1: देखिए, हम ये बात कहते हैं, एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं बर्ड इन द हैंड प्रिंसिपल, यानी कि जो कुछ आपके पास है ना उस चीज को आप इस्तेमाल करें। हर एक इंसान के पास दिमाग है, सही, उसको सिर्फ चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर, सही, चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा सरमाया नहीं बल्कि आपकी अकल, स्मार्ट डिसीजन होना जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी है, बहुत सारे गवर्नमेंट के भी नॉन गवर्नमेंट के भी इंक्यूबेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, सही, नौजवान को चाहिए वो ज्यादा नेटवर्किंग करे, मार्केट अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाए, सही, इनिशियल कैपिटल चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप छोटे पैमाने से शुरू करें, सही। मिसाल बहुत सारे ई कॉमर्स गेटवेज हैं, आप उन प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट को लेकर जा सकते हैं, आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उन एप्लीकेशंस की रीच बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप बाहर के मालिक में देखिए, बहुत बड़े बड़े भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो ब्रांडिंग हुई है, उन्होंने इतना बड़ा नाम पैदा कर लिया, वो एक छोटी से सोच से, एक किचन से शायद स्टार्ट हुए थे, लेकिन अब वो दुनिया भर में छाए हुए। वो कैसे हुए थे? वो आपको एक उसको वक्त देना पड़ता है, अंतक मेहनत होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप में तो वैसे ही बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, उन चैलेंजेस को आपको अबूर करना है, इन्वेस्टमेंट को आपको हर्डल नहीं बनाना, आपको वेंचर अपने बनाने हैं इस तरीके से कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें और रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। एआई की मदद से लोगों से जो आपने फर्स्ट हैंड चीज सुन ली थी उस पर आप यकीन ना करें, बल्कि उसको आप मजीद लोगों से मालूमात उसकी इकट्ठी करें ताकि आपको रियल प्रॉब्लम आपके सामने आए।
0: बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की कि एंटरप्रेन्योरशिप की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि बहुत कम अमली तौर पे जो है ना ज़रिए कारोबार शुरू करते हैं, आपके ख्याल में इसकी असल वजह क्या है? माली वसाइल की कमी है, नाकामी का खौफ है, या कोई तजुर्बे की कमी है?
1: मेरे ख्याल से सारी चीजें हैं, सही, लेकिन सबसे बड़ा इसमें नाकामी का खौफ है। देखिए, एंटरप्रेन्योर जो है ना उसमें किसी तरह की उम्र की कैद नहीं, किसी जेंडर की कैद नहीं, उसमें सिर्फ इंसान शायद अपने सोच का कैदी होता है। तो आप सोच को तब्दील करने की जरूरत है, अगर आप डरते रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हर फेलियर जो होता है ना वो एक नई सक्सेस का स्टार्ट होता है, सही। तो देखिये, हर मोमेंट पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर वेंचर्स शुरू हो रहे हैं, वो फेल भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो कामयाब हो रहे हैं। तो हम सिर्फ फेलियर को क्यों देखें, हम कामयाबी की तरफ क्यों देखें? मैं आप दोबारा वही चीज कहूंगा कि एग्री बिजनेस जो है ना वो हमेशा बरकरार रहने वाली चीज है। जब तक ये इंसान दुनिया में है, जब तक ये निजाम चलता रहेगा, जब तक ये चीजें मौजूद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, अब डिजिटाइजेशन का दौर है, तो डिजिटाइजेशन में महारत बोले, मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। हम अपने से सोच के कुएं का मेंढक बनकर जा रहे हैं, सही, आप कुएं से बाहर देखिए चल क्या रहा है दुनिया के अंदर ना, उस दुनिया को आप एक्सप्लोर करें, लोग क्या चाह रहे हैं वो आप उनको दें। हम आम जिंदगी में भी देखते हैं कि हम कोई चीज सोच रहे हैं, हमारे पास वो चीज बनकर सामने आ जाती है। कैसे आ रही है? इसका मतलब क्या है? हमारे ऊपर हमारी आम जिंदगी में हर एक की निगाहें हैं, हमारा डेटा पर निगाहें कि हम जो चीज सोच रहे हैं ना वो हमारे पास मार्केट में आ रही है। तो इसलिए से एंटरप्रेन्योर को भी रियल लाइफ चैलेंजेस को, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मौके के तौर पर देखना है, चैलेंजेस के तौर पर नहीं देखना है, सही, ताकि उस, और दूसरी चीज है टेक्निकल नॉलेज जो है ना उसको बढ़ाने की कोशिश करें। हम ये समझते हैं हमने कुछ चीजें पढ़ी और हम उस चीज के माहिर हो गए, नहीं, आप माहिर नहीं हो सकते। हर चीज तब्दील हो रही है, नई चीजें आ रही है, आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ चीजों को, अंडरस्टैंडिंग लेवल को अपना बढ़ाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड है, तो शाहान अजीज, आप हमें ये बताइएगा कि लास्ट में जितने भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको कोई खास पैगाम देना चाहेंगे?
1: मेरा पैगाम सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सही, कहते हैं ना जब तक आप पानी में कदम नहीं रखेंगे तो आपको समंदर की गहराई का अंदाजा नहीं होगा। तो ना गहराई का अंदाजा होगा, पानी को चखेंगे तो उसकी मिठास या नमकीन का भी एहसास होगा। तो आप सिर्फ डरते रहेंगे ना, पहले सोच से कोई काम नहीं होता, पहला कदम आपको उठाना पड़ता है, पहले कदम के बाद ही आपको पता लगता है कि जमीन किस ताकत की है, आपको आगे कदम कैसे बढ़ाना है, आपको उछलना है, आपको रेंगते हुए चलना है, क्या करना है आपको, या आपको तैरना है या पानी है वहां पर, सही। तो पहला कदम लेने से बिल्कुल मत घबराइए, कुछ नहीं होगा, आप जितना लॉस बेयर कर सकते ना वो आप स्टेप लीजिए, सही। आप ये मत समझें कि आपको बहुत बड़े सरमाए की जरूरत है, हर आप इनसे आपके पास जो आप कामयाब लोग हैं ना उनकी तरफ आप देखें वो कामयाबी की सीढ़ी किस तरह से चढ़ रहे हैं। हसद नहीं करें, ये मत समझें कि उन्होंने चंद लम्हों में चंद हफ्तों में वो मकाम हासिल कर लिया, उन्होंने उन्होंने दिन रात एक कर वो मकाम हासिल किया है। तो आपको भी दिन रात एक करने पड़ेंगे ना, जैसे कहते हैं तब तक सोना कुंदन बनता है, तो आपको कुंदन बनने के लिए तपना पड़ेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सही, कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती। सही, आसान उन लोगों को लगती है जो दूर से देख रहे होते। सही, आपको दूसरी तरफ जाकर मेहनत करनी है। जब तक आप सिर्फ एक देखने वाले के तौर पर नजारे का मजा लेते रहेंगे ना, हाँ ये कामयाब हो रहा है और मैं क्यों नहीं हो रहा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपको दूसरी तरफ जाना होगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी।
0: ओके जी, बहुत अच्छा मैसेज सुनने वालों के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर शाहान अजीज, आप हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन द शो।
1: बहुत शुक्रिया आपका भी।
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज। और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट कर रहा है जी HFT पाकिस्तान, यानी कि हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान। और हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान की जानिब से आप तक ये सेगमेंट पहुंचाया गया। और आज का ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह मेरी आपसे दोबारा चिटचैट होगी कल वाले सेगमेंट में। और हम यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक भी लेंगे। सो आपने यहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन GFM रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
2: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
3: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
2: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
2: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
3: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
6: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमालु कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: आप सुन रहे हैं,
3: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान के दौरे से पहुंतल कोवैती परदेही वजीर जी परदेही आफिस आमद नायब वजीर आजम इसहाक डार कोवैती परदेही वजीर जो आदर भाव कयो परदेही आफिस में कोवैती परदेही वजीर के नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात खिते की सूरतहाल समेत बिन तरफन लागापन से गालियों खिते में जारी तकरार गालियों जरिए हल करने जोर भरो।

धांधलिन जी मास्टर पीपल्स पार्टी धांधलिन जूं ॻाल्हियूं करे रही आहे। ॿुधायो वञे त क़यामत कहिड़े वक़्तु ईंदी। पंजाब जे वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो बयान। पीपल्स पार्टी पंजाब अॻवान हसन मुर्तज़ा चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में नून लीग धांधलीअ जा नवां मिसाल क़ाइम कया। इलेक्शन कमीशन बि नवाज़ लीग जे एजेंट तौरु किरदारु अदा कयो आहे। सखर हैदराबाद मोटरवे जा पैसा खाईंदड़नि जा पेरा मटियारी में मिलनि था। सिंधूअ में असांजो साह आहे। सिंधू दरिया हज़ारनि सालनि खां वहंदो रहियो आहे ऐं वहंदो रहंदो। भिटा में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे उर्स जो इफ़्तिताह करण बाद सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी चयो आहे त सखर हैदराबाद मोटरवे जी तामीर लाइ 6 अरब रुपया हड़प कंदड़ मटियारी जा ई आहिनि। सखर हैदराबाद मोटरवे जो कमु हिन साल शुरू थींदो। भारत पाणीअ ते धाड़ो हयो त मुंहुं टोड़ जवाबु ॾींदासीं। सिंध मां धाड़ेल राज नवाज़ शरीफ़ ख़तमु कयो हो।

शायरन जे सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे 283 ऐं उर्स जूं तकरीबूं शुरू थी वियूं आहिनि। सिंध जे गवर्नर नियाल हाशमी मज़ार ते चादर चाढ़े उर्स जो इफ़्तिताह कयो। सिक्योरिटी जा इंतिहाई सख़्त इंतज़ाम कया विया आहिनि। मुल्क जे कुंड कुड़ मां पांधीड़नि जी आमद जारी आहे।

ठठे वेझो कोयले सां भरियल मालगाड़ी कलटी। रेलवे ट्रैक बंद झुंगशाही फाटक भरसां लोक लाइन ते कोयले सां भरियल मालगाड़ी कलटी थी पई। मालगाड़ी कलटी थियण सबब जानी नुकसान न थियो। हादसे सबब झुंगशाही वटां रेलवे ट्रैक बंद थी वियो आहे। पंजाब वींदड़ गाॾियूं बीह वियूं।

नसीराबाद में बिजली जी बंदिश ऐं वाधू बिलनि खिलाफ़ शहरी सरापा एहतजाज शहरी एतिहाद जे सॾु ते प्यादल मार्च करे गिर्ड स्टेशन साम्हूं धरणो हयो वियो। अॻवाणनि जो चवणु आहे त सेपो इंतिज़ाम जी नाहेली ऐं करप्शन सबबि 16 खां 18 कलाक लोड शेडिंग कई पई वञे, लोड शेडिंग ख़तमु कई वञे।

खैरपुर वेझो नारे तालके में बेवा औरत जे गऊं ते तशद्दुद करण जो चइनि जवाबदारनि मथां केस दाखिल। सरकारी फरियाद ते सिकंदर अली सफदर, गुलाम जाफर ऐं अली टालपुर मथां केस दाखिल कयो वियो। पुलिस जो चवणु आहे त कार्रवाई कंदे हिकु जवाबदार गिरफ़्तार कयो वियो आहे। कड़ियो गमर भरसां जाम शाह खे 50 फुट गारो समय एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि अची वियो। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त हाफिज़ अब्दुल्ला समो वटां जाम वाह शाह खे गारो लॻो आहे। आपाशी खाते खे आगाह कयो वियो पर केर बि नाहे पहुतो। पंहिंजे तहत पाणी गारो बंदि करे रहिया आहियूं। ऐं हिकु वण सिंध अमर जे नाओ मोम जारी। KTN न्यूज़ ऐं कावस जे सर ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मोम जारी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी आहे। सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बि वर्जाउ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनियो बंदले तमाम खूबसूरत मासूमी सुने समात उनको मुझे तरफा अस्सलामु अलैकुम। पुरकुली दुआ के समंदर साधु की बारिश रासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात से जागता तुम्हें आसमात जिंदगी से मौत ना से तार से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर बोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। बिल्कुल जी, आपकी खूबसूरती और जरा हमारा भी ये शौक बन चुका है कि आप लोगों को खूबसूरत और ब्यूटीफुल बनाते चले। अगर आप ये सीन और खूबसूरत बनना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि ना सिर्फ आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रख सकते हैं बल्कि आप हमेशा के लिए अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों की खूबसूरती के लिए मुकम्मल प्लान है जनाब। तो बिल्कुल बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन कहते ना कितनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल अपना तारुफ करवाते हैं लिसनर्स फॉर रीजन टू द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ मुखातिब है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी से बताएं कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, कितनी सारी प्यारी प्यारी समाते जो हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम सुन रहे हैं और प्रोग्राम में फुल ऑन एंजॉय करने के लिए रेडी शेडी हो चुके हैं। बिल्कुल जी, साथ साथ आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ आप ऐसा कीजिए जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत के फहालत कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद अन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुपरकूल मूड के साथ सुपरकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली है। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे में आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाली हूँ। और इन 2 घंटों में हम करेंगे जी इन्नी शाली बातें। तो यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरी की चटपटा मसाला कर्ज आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जी आज एक बहुत ही खूबसूरत से कसीदे के साथ जो कि आप

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। White Ash and D Skin Beauty Show स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है White Ash Beauty Products and D Skin Beauty Products के तावल से। अगर आप भी White Ash Beauty Products का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर D Skin Beauty Products लगाना चाहते हैं, आप लगाते रहिए ताकि आप लोगों को पता चले कि खूबसूरतियां जो हैं वो आजकल आप लोगों को कैसे मिलेंगी। तो खूबसूरतियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कैसे करेंगे। और सबसे पहली बात कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो आज मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी, टॉपिक की जानब आ जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हंसते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं हंसते हैं। दुनिया में आप लोगों को हर तरह के जो है ना इंसान मिल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें देखकर आप ये कहते होंगे कि भाई ये इंसान आकर दुनिया में क्यों है, क्योंकि वो इतने खड़ूस टाइप के होते हैं। अगला इंसान उनसे अगर बात करने बैठ जाए तो फिर जो है ना वो सोचता होगा कि भाई हम क्यों यहाँ पर बैठे। लेकिन कुछ लोग और ऐसे होते हैं कि वो बहुत कुर्बायती होते हैं, उनके साथ अगर आप बैठ जाए तो आपका दिल करेगा बस इनसे बातें करते रहे, एक लाइन इंसान बोलता रहे। लेकिन ऐसी एक और भी बात है कि जो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं या जो लोग कुछ भी नहीं, यानी कि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता, वो सोचते हैं कि भाई हम क्यों आकर हंसे, हमारी जिंदगी में है ही क्या। तो आज मेरा सवाल आप लोगों से कुछ ऐसा होने वाला है, अगर आप फर्ज कर लें कि अगर हंसने पर पैसे मिलते, हाँ जी, जो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं या जिन लोगों की आदत है बिल्कुल भी नहीं हंसना, तो आप मुझे बताएं कि अगर हंसने पर पैसे मिलते तो आप कितना कमा लेते। यकीन जाने मैं तो वे खरबपति होती। बताइए अपना, आप कितना कमा लेते अगर हंसने पर पैसे मिलते, तो आप कितना कमाते। बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम का टॉपिक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हाँ जी जनाब, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। उसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। आप आइए और वहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम White Ash and D Skin Beauty Show की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आपने लाइक करना है, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप जिंदा हैं, मुझे पता होना चाहिए।

0: आइए समझ रहे ना, आप लोगों को मरा हुआ घोषित कर देंगे। तो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि अगर हंसने पर पैसे मिलते तो आप कितना कमा लेते, बताइए जरा मुझे। और इसी के साथ साथ अगर आप वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी बताइए आपकी करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हुई या अभी तक नहीं। क्योंकि भाई देखिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा, इतना ज्यादा टाइम हो चुका है प्रोग्राम को चलते हुए, अब आप लोगों के हर करीबी जनरल स्टोर पर वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी। और आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए, अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि अब जो है ना वो काफी टाइम हो चुका है आप सुन भी रहे हैं कि वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से क्या आप लोगों को फायदे मिल रहे हैं, तो लाजमी आप इस्तेमाल किया करें। और बाकी जो नए लोग हमारे साथ मौजूद है जिनको नहीं पता उनको बताएंगे जी, रोजाना आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि मार्केट जब आप जाएं तो आप लोग अच्छे से जान चुके हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, बिल्कुल जी, चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं, खूबसूरती की हिफाजत करना चाहते हैं, तो आपको वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आप कैसे अवेलेबल कराने वाले अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये भी बताएंगे। और आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो आप लोगों को वेलकम भी कहा जाता है। आदिल हुसैन हमारे पास सबसे पहले मौजूद, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूं, बताएं। देखते हैं तेरी नजरों को फुर्सत ना मिली, वरना मर्ज इतना ला इलाज ना था, हमने वहां भी मोहब्बत बांट दी जहां मोहब्बतों का रिवाज भी ना था। ओके अली अकबर ब्रोही भाई, हमें सुन रहे हैं सकरेन से, कहते हैं वेरी नाइस शो सिद्रा मुस्कान, प्रोग्राम की क्या तारीफ करें, अच्छी आवाज के साथ प्रोग्राम गुड है, वेलकम सिद्रा जी। सॉन्ग चलें भाई, मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करूंगी। अखलाक बलोच भाई कहते हैं यो यो सही गाला, सही गाला, सही ताचो। अच्छा नजीर कोसो भाई में सुन रहे बलोचिस्तान से, आपको भी वेलकम कहा जाता है, कहते आज शायद तुम सिर्फ सबर कर रहे हो मगर कल यही सबर तुम्हारे लिए ऐसी खुशियां लेकर आएगा जिन्हें देखकर तुम कहोगे या अल्लाह अगर मुझे अंजाम मालूम होता तो मैं इस आजमाइश पर भी मुस्कुरा देता। सबर कभी जाया नहीं जाता, वो हमेशा किसी खूबसूरत अंजाम को जन्म देता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल जी, प्रोग्राम वाइट एशियन जी स्किन ब्यूटी शो, यहाँ पर हैप्पी गर्ल हमारे साथ है, कहती है अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट आरजे, आप कैसी हैं, वेलकम टू शो, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। और हमारे साथ ही हिदायतुल्लाह अहमद अन्नी, वालेकुम अस्सलाम, की आई हो। और मुश्ताक अहमद कुंभर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। वहीद वफाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा जी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं आप कैसे हैं। मुश्ताक अहमद कुंभर, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक जी, आप बताएं, माशाल्लाह प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, थैंक यू उसके लिए। और आदिल कहते हैं वो नहीं नहीं वो लड़की रोज ही आती है, वो लड़की कभी कभी घोसड़ू बन जाती है वरना तो रोज आती है। शाहनो बलोच हमारे साथ मौजूद है, रतो देरो से आप हमारा शो सुन रहे हैं, खुश आमदीद। और रतो देरो से भाई याद आ गया हमारे साथ, यहाँ पर नसरुल्ला सुमरो भी ज्वाइन कर चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम बाबा, असा भी अची वया सी को आहे जे को असा के सुणी सबको तांगे सुणी दो आए अल्लाह, कहते असा जो दिल हले तो छो बलाड़ो छा कयो अथव। अच्छा मोहम्मद ताहिलुन भाई हमारे साथ मौजूद है, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। और मुमताज अली आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून चल रहा है। एहसन अरबानी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, मदद करें, ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान, लाड़काना की पहचान में भी आ गया, तबियत और मूड कैसा है, सब भी बहुत बढ़िया, आप बताएं। और हिदायतुल्लाह कैसे वे थे, लिखा है सिद्रा वैसे आज वो अदा आया है, हाँ जी नसरुल्ला भाई आए हैं, वेलकम कहा जाता है उनको, और पता नहीं इतने कहाँ बिजी हैं कि वो प्रोग्राम में आना ही छोड़ चुके हैं। चलें जी, जो जो लोग ऐसे हैं जो प्रोग्राम में नहीं आते उनको बोलें भाई आया करें प्रोग्राम में, आप लोगों का प्रोग्राम है। और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानिए ताकि आप लोगों को पता चले कि आप खूबसूरत कैसे हो सकते हैं। तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, रुको जरा सबर करो, वापस तो आने दो मुझे, टाइम हो जाता है जरा, यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास, तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। White Asian D Skin Beauty Show is sponsored by White Asian Beauty Products and D Skin Beauty Products. लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।
1: मोरो नौशहरो क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

बाकी में तो आप लोगों के पसंद के गाने सुनते ना, कुछ ऐसे होते हैं जो पसंद आते हैं, कुछ नहीं पसंद, लेकिन हमें लगाने पड़ते हैं, तो बस वही बात है। तो यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, प्रोग्राम की पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिएगा, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो कौन कौन हमारे साथ हैं जी। इमरान खान रुख हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम और वेलकम कहा जाता है। चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरे लफ्जों से मात मुमकिन ना थी। ओके सो उसने मेरे जज्बों से वार किया, वाह वाह वाह वाह, सही समझी यासी। कहते मेरी तो उसने हंसी बंद कर दी है, पैसे कैसे कमाऊंगा, योर टॉपिक आंसर। अच्छा किसने बताएं जल्दी। अच्छा अखलाक भाई कहते हैं टॉपिक का आंसर फिर बुर्ज खलीफा मेरा होता। वाह। अच्छा ये हमारी साथ है हैप्पी गर्ल, कहती आज से आपके सवाल का जवाब है, अगर हंसने पर पैसे मिलते तो पहले आप पैसे लेती, क्योंकि आप बहुत हंसती हैं, माशाल्लाह आपको सलामत रखे जी। वो तो मैंने आते ही बोला कि मैं खरबपति होती, आप अपना बताएं आप कितना कमाते। हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे हंसाने वाली तुम होगी तो बहुत, वरना जीरो कमाते टॉपिक आंसर। ऐसा मतलब आप बिल्कुल कम हंसते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा मामा समान कहते हैं नाइस टॉपिक, आपकी अमाउंट को हमारे साथ। अच्छा सोच ले कहीं ऐसा हो ही ना जाए। अच्छा पैसे तो इतने ज्यादा कमा लेंगे, लेकिन फिर ये बताएं कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते या फिर नहीं? क्योंकि असल बात ये आ जाती है कि आप थोड़ी सी कंजूस हैं, आप लेते नहीं है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो लिया करें। वैसे जब हंसने पर पैसे मिलते तब तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो मुझे यकीन है कि आप बांटते व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट, है ना? है ना? बिल्कुल जी। जियो करें

सही वाजो गानो आना का अलावा अब्दुल गफार भाई हमारे साथ खुश आमदीद कहते हैं प्यारे भाई जान को, और हाफिज यूनिस बाबर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अली अकबर बिरोही भाई आपको भी खुश आमदीद, आपका गाना लगाते हैं। नसरुल्ला भाई कहते हैं हल असान जा अन्या ताई फेन आए नमाज समझो हाँ असा के विसारे छो हूँ बाबा भुला आया तवाजी। अच्छा उनका अलावा किशोर भाई कहते हाय हेलो स्मार्ट हाजिर है आपकी बातों में आने के लिए, ये बढ़िया था भीड़ू। अच्छा उनका अलावा क्या कहते हैं टॉपिक जितना आप अमीर होती उससे थोड़ा सा कम मैं भी होता, यू नो यस यस आई नो। मेरे भाई हैं तो मेरे पास में ही शायद आपका भी बंगला होता है ना।

खाओ बाबा दिल चे नी तुझो नालो मां सुकून रखी सजा पोस्ट के लाइक एंड शेयर कयो बाबा कंजूसियों छाजू आ नी ते भी कंजूसियों नथा मड़ो न मना ओके जी वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहे नी वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर तमा इस्तेमाल कयो पया त बुधायो केड़ो प्रोडक्ट आहे जेको तमा के इंप्रेस करी चुको आहे केड़ो प्रोडक्ट आहे जेको तमा इस्तेमाल कयो पया सो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तमा जे लाइ वाइटिश ब्यूटी क्रीम आहे जेका तमा जानो था त बाबा नाइट क्रीम आहे तमा इस्तेमाल कना त तमा के वाह जी खूबसूरती मिलंदी आई वाइटिश लवली क्रीम जे बारे में भी तमा के खबर आहे त हीअ फेयरनेस क्रीम आहे ऐं इनखे तमा इस्तेमाल कना मतलब मेकअप जे तौर ते भी करे सघो था वैसे भी अगर तमा के कोई फेयरनेस क्रीम में सुठी न लॻंदी आहे सूट नथी करे त तमा वाइटिश लवली क्रीम जो ट्राई करे ॾिसो बाबा ॾाढो हेलो प्रोडक्ट एंड डॉक्टर पिंपल एंटी एग्नी ट्यूब जे

डॉक्टर पिंपल इंटी एकनी ट्यूब जेकवाई उन्हें मानन जले आहे जिंजे चेहरे ते एकनी हुंदा है एकनी जो खात्मो करण चाहियो था तो डॉक्टर पिंपल इंटी एकनी ट्यूब जो इस्तेमाल करे एंड डॉक्टर पिंपल इंटी एकनी ट्यूब जेकवाई ही बाबा मेडिकेटेड ट्यूब आहे इनके फुल जड़ी बूटन से तैयार कयो वयो आहे एने में वे सब चीजों एड आहे जेके तवाजे एकनी जो कंट्रोल करे सगन एने न सिर्फ तवाजे चेहरे जा एकनी कंट्रोल थिना बल्कि तवाजे चेहरे ते एक्स्ट्रा ऑयल आहे ब्लैक हेड्स आहेन ब्लैक पोर्ट्स आहेन व्हाइट हेड्स आहेन एक्स्ट्रा ऑयल हो जे या एकनी केड़ी भी टाइप जो हो जे तवाजा छो तो एकनी जेके ना उहे भी किस्म जा हुंदा है सो केड़ी भी किस्म जो एकनी आ वो बिल्कुल खत्म थी वेंदो डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब लगाईंदा था एकनी सा गड़ोगर तवाजे चेहरे जा एकनी जा निशान हो जन कोई सड़न जो निशान आ कोई कट जो निशान आ केतरा भी निशान हो जन केड़ा भी जिद्दी नंढपण में को धक लगो हो या जेको फेस ते मौजूद आ उन निशान तो वो भी रिमूव थी सके तो जदी तवा डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब जो यूज करा एंड डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब जेको ना तवा दिल खोले लगाए सको था इन जे अंदर कोई भी केमिकल एड ना है सेंसिटिव स्किन वारा मानू भी लगाए सगन था जिते जिते एकनिया जिते जिते निशाना उते उते लगाए जो पूरे फेस ते नाए लगाणो लगाण जे तरीके कार बिल्कुल ही अंदर ता पांजो सबखा पेरी फेस वॉश करींदा चाहे ता व्हाइटिश ब्यूटी सोप लगाए या व्हाइटिश जो फेस वॉश लगायो पांजो अच्छे तरीके सा मुंह धोई अचो सही आ उनका पो हथ भी चंगे तरीके सा क्लीन होजन तवा जा कोई जिते जिते एकनिया जिते जिते निशाना उते उते तवा के डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब लगाणो आ आई तवा दीह जो भी लगायो यानी कि सुबह जो भी लगायो आई रात जो भी लगायो अगर एकनी सफा घणा तो उहे ट्रे चक्कर लगाए सकंदा यानी कि ता मंजन जो भी लगाए सको ता बाकी अगर एकनी नॉर्मल आए निशान आउना के रिमूव करन चाहे ता ता बार मर्तबा लगायो ठीक है सुबह इन शाम जो अच्छा चाहता जो दिल खोले या डबो खोले हाँ डबो खोले टेक्निकल तो यही थी सके तो बाकी कुछ मानो थोड़ा दिल सा कमजोर होना है ना वो ये सोच किना दबा बासा लगायो या न लगायो इन लगाने वाला जेकी मानो ने डाढ़ा हाला किना दबा हाँ तो वाजले एड़ा प्रोडक्ट अच्छी वयान जेकी तवाजे खूबसूरती जलाया इन बाबा आई तवाजे खूबसूरती जी हिफाजत भी करना था फायदो हासिल करनो आहे आई तवा के व्हाइट एज प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ता सो लास्ट में ट्रैक के दिसो तवा जी खूबसूरती तवा के नमले त पहुंचे

हाओ बाबा वाजु गानो हुयो ऐं कुझु माण्हुनि जो नालो जेको आहे सुकून त ठहंदो आहे पर कुझु माण्हुनि जो नालो वरी समझी विया हूंदा सो ही वारो गानो असां ॿुधंदासीं सेविश जी आवाज़ में ही सॉन्ग आहे ॾाढो वीआईपी गानो आहे तव्हांखे पसंदि ईंदो न अचे त पैसा वापसि कंदासीं मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद वालेकुम असलाम के हिते ही मोहसिन अली बिरोही एंड मोहसिन अली मोहसिन अहमद बिरोही एंड मोहसिन अली बिरोही दोनों हमारे साथ है मीरो खान चौक लाड़काना से आपको खुश आमदीद कहा जाता है और ये हमारे साथ भाईजान के अदा मुखे कल शाम फील थियो कंहिंजो गानो न हलंदो आहे त कावड़ छो कंदा आहिनि इहो फील थियो या बस इहो त हुननि खां पुछंदासीं जेके कावड़जी वेंदा आहिनि सम्झो था अली मुर्तज़ा खे सलाम एंड गुड आफ्टरनून आई एम हेयर I am here to Pagar Mehjal University Library mein. Without bijli, bijli, bijli baji ne aapki tarah mera muh banaya hua hai. Aray bhai, maine kal aapka gana lagaya to tha. Nahi suna da tha. Waise bijli ji bhai muma na kar jo. और अली मुर्तजा कहते मुझे लगता था अंग्रेजों ने कुछ चीजें बनाई है एंटरटेनमेंट के लिए मगर हम हाँ भाई हम आदत से मजबूर है हकीकत असा के वही आदत पेजी वेंदी सही आयो सही आयो सच्चा आयो और किशोर भाई कहते हैं कि इंसान को समझने के लिए उसके साथ रहना जरूरी नहीं होता बाकी समझना सीखिए अच्छा अब्दुल रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद है खुश आमदी तथा खाले तमाम गाने जी फरमाइश कया ठीका ठीका हलायूं था कुछ बाकी चीजें ऐसी होती हैं जो कहनी नहीं पड़ती बस वो महसूस हो जाती है

ओके जी, अब्दुल रजाक भाई आपको भी वेलकम हो गया. थैंक यू. हिदायतुल्लाह आपको भी वेलकम हो गया. अखलाक भाई आप हंस रहे हैं. हंसिए जी, हंसिए. क्या पता बहुत ज्यादा आपके पैसे बन जाए. हैप्पी गर्ल, आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू. ये भाई कहते हैं अदा आप सच कहते हैं, इंसान को अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए. मुझी मैडम टे बारन जी माँ आ पर ॾिसण में 16 सालन जी लगे थी. बिल्कुल हो इहा ॻाल्हि माँ, इहा चई चई सम्झाए मूंखे मथे में सूर पइजी वेंदो. पर तव्हां ॻाल्हि सम्झंदा न आहियो. अगरि तव्हांजी उमिरि बि वधंदी वञे थी ऐं तव्हांजी स्किन ते रिंकल अची विया आहिनि ऐं तव्हांजी अञा शादी बि कोन थी आहे त ॾिसो केॾी वॾी ॻाल्हि आहे इहा. ऐं तव्हांखे बि वाइट एज जा प्रोडक्ट इस्तेमालु करणु घुरिजनि जीअं तव्हां बि पंहिंजी उमिरि खां सफ़ा नंढा लॻो. सफ़ा नंढा. हिकिड़ी नंढड़ी ते ॻाल्हि यादि अची वई, ॿुधायां थी मोटी जी. टाइम थी वियो न्यूज़ ब्रेक जो, सो तव्हां हिते वेठा हुजो, काॾे बि न वञो. अलाह कसम अथव मां उहो हीअं वञी हीअं मोटां थी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. वाइटेश एंड टी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. हणो जे तव्हां बि सुणा थियो बाबा.

मीरपुर डिवीजन में थियल चूंडन बाद पीपल्स पार्टी ए नवाज लीग में जारी चिकताण घट न थी। राजा परवेज अशरफ चूंडन दौरान थियल धांधलियुनि जूं साबितियूं साम्हूं आणे छॾियूं। राजा परवेज अशरफ चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स साड़िया विया, माण्हुनि ते तशद कयो वियो।

पार्टी के पोलिंग एजेंट के शहीद किया वो आजाद कश्मीर के चूंडन में थियल धांधलियों जो मिसाल मिलन भी मुश्किल है। आजाद कश्मीर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर असां जे एतराज वारन पोलिंग स्टेशन से बीहर चूंड कराने जो हुक्म दे। धांधलियों के माहिर पीपल्स पार्टी धांधलियों जो गालियों करे रही है। बुधायो वे तो कयामत कड़े वक्त इंदी। पंजाब के वजीर आला मरियम नवाज के पीपल्स पार्टी से टोक। पाकिस्तान के दौरे से पौतल कोयती परे वजीर के परे ऑफिस आमद नायब वजीर आजम एसाकदार कोयती परे वजीर जो आदर भाव किया। परे ऑफिस में कोयती वजीर परे के नायब वजीर आजम एसाकदार से मुलाकात खिते की सूरतयाल समेत बिन तरफन लागापन से गाल खिते में जारी तकरार गाल जरिए हल करने जोर भर। ईरान जा उर्दन में अमेरिकी अड्डन से मिजाइल हमला। उर्दन पारा पंज ईरानी मिजाइल नाकारा बनाने की दावा। अमेरिकी फौज पारा उर्दन में ईरानी हमलन की तस्दीक। ईरानी पासदार इनकलाब है तो उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे ए सेनेट काम के मरकज के बैलिस्टिक मिजाइल से निशानो बनाया है। उर्दन है तो ईरान पारा फायर कल पंज मिजाइल नाकारा बनाया वह। अमेरिकी फौज ईरानी हमलन की तस्दीक कदे है तो ईरान तरफा फायर कल समूरा मिजाइल दिफाई निज़ाम रोकया। सऊदी अरब जो ऑयल रिफाइनरीज से हमलन बाद अमेरिका से गड इराक में ईरानी हामी ग्रुपन के थाकन से बमबारी। अमेरिकी सेनेट का मौजूद इराक में सऊदियन से हमलन की रिथाबंदी कदड़ ईरानी हामी ग्रुपन के थाकन से सऊदियन से गड़ी कार्रवाई क्यों आन। सऊदी अरब भी कार्रवाई की तस्दीक कर छी है। ईरान के हामी ग्रुप है तो सऊदी ए अमेरिकी हमले में संदन 30 कारकुन मार केतरा ही जख्मी थे। सऊदी परे वजीर जो कतर बहरीन ए कुवैत के परे वजीर से राबतो खिते की सूरतयाल चिकटाण घटाण वाले कोशिशों से गाल बोल कई वही। गाल बोल दौरान टिन्हीं मुल्क के परे वजीर बहरी रस्तन के तहफुज से जोर दिनों। कतर ए बहरीनी वजीर सऊदी से इराक में हमलन की मजम्मत भी कई। आजाद कश्मीर के शहर रावलाकोट में पाबंदी मड़ियल तंजीम फोर्सिस ए पुलिस से हमला। शहरन के मिल्कियतन के भी नुकसान पहुंचाया। कें भी जत्थे के फोर्सिस ए पुलिस से हमलन की इजाजत न दई सकजे थी। आजाद कश्मीर के पुलिस तर्जुमान है तो ही पुरमन तहरीक न पर हथियारबंद जत्थो बन चुकी है। पुलिस ए फोर्सिस से हमला कर रहा है। जत्थन की फायरिंग में रेंजर सहलकार शहीद ए 15 पुलिस सहलकार जख्मी थे। पुलिस ए कानून लागू कदड़ इदार शरपसंद गिरफ्तार कयो आहे। सिंध के वरे वजीर से अमेरिकी कारोबारी वफद की मुलाकात। वरे वजीर अमेरिकी सीड़पकार के सिंध में तवानाई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सेहत ए ज़राअत के शोबन में सीड़पकारी की दावत दिनी। मुराद सैयद मुराद अली शाह सिंध हुकूमत सीड़पकार के शफाफ मुस्तकम ए कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने पुरजम है। पॉलिसी के तसलसल रेगुलेटरी सहूलत हर मुमकिन हुकूमती सहकार के यकीनी बनाया वो।

सखर हैदराबाद मोटरवे जा पैसा खाईंदड़नि जा पेरा मटियारी में मिलनि था। सिंधूअ में असांजो साह आहे। सिंधू दरिया हज़ारे सालनि खां वहंदो रहियो आहे ऐं वहंदो रहंदो। भिटशाह में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे उर्स जो इफ़्तिताह करण बाद सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी चयो आहे त सखर हैदराबाद मोटरवे जी तामीर लाइ 6 अरब रुपया हड़प कंदड़ मटियारी जा ई आहिनि। सखर हैदराबाद मोटरवे जो कमु हिन साल शुरू थींदो। भारत पाणीअ ते धाड़ो हयो त मुंहुं ट्रोड़ जवाब ॾींदासीं। सिंध मां धाड़ेल राज नवाज़ शरीफ़ ख़तमु कयो हो। शायरनि जे सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे 283 उर्स जूं तकरीबूं शुरू थी वियूं आहिनि। सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी मज़ार ते चादर चाढ़े उर्स जो इफ़्तिताह कयो। सिक्योरिटीअ जा इंतिज़ाम ताईं सख़्त कया विया आहिनि। मुल्क जे कुंड कुंड मां पांदीड़नि जी आमद जारी आहे।

हैदराबाद में SPSC जे इम्तिहाननि में हेरा फेरी ऐं पंहिंजा नवाज़ीअ ख़िलाफ़ 6 ॾींहं एहतजाज जारी। मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि जे कमीशन आफ़िस आॾो लॻायल एहतजाजी कैम्प ते सियासी समाजी अॻवाणनि जी आमद बि जारी। अॻवाणनि चयो त सिंध में मेरिट जो कतले आम थी रहियो आहे, नौजवान हाणे पोइते न हटंदा। सोदापुर वेझो घरू अणबण तां मुड़ुस ज़ाल खे क़तल करे छॾियो, जवाबदार फरार। ॻोठ जखराणी में जवाबदार यासीन जखराणी पंहिंजी ज़ाल नादिया ते पिस्टल जा फायर करे क़तल कयो। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार ज़ाल खे क़तल करे फरार थी वियो आहे। वाक़िए जी वधीक जांच करे रहिया आहियूं।

सिंध में धारी आबादकारी खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरते जकोबाद कनकोट में मुजाहरा जकोबाद में एसटीपी कारकुनन जिले ऑफिस का एहतजाजी जुलूस कढ़ी प्रेस क्लब आडो धरणो हयो। कनकोट में कारकुनन एसटीपी ऑफिस का एहतजाजी रैली कढ़ी डीसी ऑफिस आडो धरणो हयो। अगवाणन जो चवण है त सिंध मां धारन के नेकाली डियण लाइ सिंध में का भी कार्रवाई न कई वई है, धारन के नेकाली डिनी वञे।

छठे बजे कोयले सा भरेल मालगाड़ी कल्टी रेलवे ट्रैक बंद झुंगशाही फाटक भरसा लोक लाइन ते कोयले सा भरेल मालगाड़ी कल्टी थी पई मालगाड़ी कल्टी थे सबब जानी नुकसान न थो हादसे सबब झुंगशाही वटा रेलवे ट्रैक बंद थी वो पंजाब वींदड़ गाड़ियों बीह व्यू।

0: नसीराबाद में बिजली की बंदिश ए वाधू बिलन खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज शहरी एहतजाज के सड़ से प्यादल मार्च कर ग्रिड स्टेशन सामू धरणो वो अगवाणन जो चवण है सेको इंतजामिया की नाहली ए करप्शन सबब 16 खां 18 कलाक लोडशेडिंग कई पी वे लोडशेडिंग खत्म कई वे खैरपुर वेझो नारे तालके में बेवा औरत के गऊ से तशद्द करण जो चयन जवाबदारन मथा केस दाखिल सरकारी फरियाद से सिकंदर अली सफदर गुलाम जाफर ए अली टालपुर मथा केस दाखिल वो पुलिस जो चवण है त कार्रवाई कदे एक जवाबदार गुलाम जाफर उर्फ कालू टालपुर के गिरफ्तार वो है कड़ियों घंवर भरसा जाम शाह के 50 फुट गारो सवे एकड़न ते बीठल फसल पानी हेठ गोठान जो चवण है हाफिज अब्दुल्ला समूह वटा जाम बाद शाह के गारो लगो है आपाशी खाते के आगाह कयो पर केर भी नाहे पोतो पेंजे तहत पान गारो बंद करे रहा हूं एक वण सिंध मड़ जे नाव मोम जारी केटीएन न्यूज ए कावस के सड से सिंध के मौसमियाती तब्दीली का बचाने लाय वण लगाने वाली मोम जारी मुख्तलिफ शहर में सियासी समाजी धुरन पारा वण लगाने जो सिलसिलो जारी है सिंध के सरसब्ज रखने वाले अजम जो भी वर्जाव
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: क्या आप जोड़ों के दर्द पट्ठों के खिंचाव कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम
2: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
3: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द
2: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ
3: गर्दन और कंधों के दर्द
2: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब
3: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम दर्द सूजन वरम फौरी खत्म आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे, ये थोड़ी सी नींदाजी ताक है। तो बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को मिल रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन फेस वॉश। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। और ये दो प्रोडक्ट अभी तक बने हैं, और ये जो दो प्रोडक्ट अभी बने हैं ना, ये इतने कमाल के प्रोडक्ट्स हैं कि जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को एहसास होगा कि आप वाकई कोई ऐसा प्रोडक्ट। इस्तेमाल करें जेको बब्बा वडेरा माण्हू हणंदा आहिनि। सो तव्हां बि अगरि इहो अहसास ऐं तव्हां इहो फीलिंग हासिल करणु चाहियो था, तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे ख़ासि करे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ बि तयारु कई वई आहे जंहिंजे चहिरे ते जेको आहे न स्किन घणी सेंसिटिव हूंदी आहे। सेंसिटिव स्किन जे हुजण सां तव्हांजी स्किन ते का बि क्रीम सूट न आहे कंदी। ऐं तव्हां इन ॻाल्हि खे वठी करे ॾाढो परेशान वेठा आहियो त बाबा तव्हांजी परेशानी खे दूरि कयो वेंदो ऐं तव्हांजी परेशानियुनि खे सम्झो वेंदो ऐं तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो मशवरो ॾिनो वेंदो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां हणंदा त तव्हांजी सेंसिटिव स्किन बि सफ़ा सही थी वेंदी ऐं तव्हांजी सेंसिटिव स्किन ते बि सूट कंदी। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे ही मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, हिनखे डॉक्टर्स ठाहियो आहे। ऐं जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठंदा न त हुन जे मथां बि तव्हांखे डॉक्टर माई जो फोटो नज़र ईंदो। त ही ॾाढो भलो ॾाढो VIP प्रोडक्ट अथव ऐं का बि टेंशन जी ॻाल्हि न आहे, कोई बि अहिड़ी हिन जे अंदरि चीज़ न आहे एड जंहिंमें तव्हांखे इहो लॻो त बाबा केमिकल हूंदो, ईअं बिल्कुल बि न आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे तयारु कयो वियो आहे जंहिंजे अंदरि तव्हांखे मिलंदो माइक्रोबीट्स फार्मुलेशन, वाइटमिन ई बीट, अल्फा अरबुटीन, कॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, इहे सभु जेके चीज़ूं आहिनि तव्हांजी स्किन जे लाइ ॾाढियूं बहितरीन, ॾाढियूं फ़ाइदेमंद हूंदियूं आहिनि। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका जंहिंजे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, त हिनखे ॾिठो वञे त पाकिस्तान में त तव्हांखे मिलंदी, पर पाकिस्तान खां ॿाहिरनि मुल्कनि में बि तव्हांखे मिली वेंदो हीउ प्रोडक्ट। ऐं उन खां अलावा मार्केट में तव्हां वेंदा न त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो नालो वठी करे परचेज़ करे सघो था। ऐं तव्हांखे अगरि नालो, कुझु माण्हू जेके कॉल ते अची वीचारा चवंदा आहिनि त डी अलाए छा हू चवंदा आहिनि, मूंखे हिन महिल यादि नथो अचे, मतिलबु उन्हनि खे सही तरीक़े सां नालो न ईंदो आहे चवण। सो अगरि तव्हांखे बि नालो नथो अचे त तव्हां ॾिसजो त डॿे ते जंहिंजे माईअ जे माई जेका उहा डॉक्टर माई आहे त उहा क्रीम तव्हां वठिजो, ठीकु आहे। डॿे ते माई जेका उहा डॉक्टर आहे, इन ॻाल्हि में तव्हां सम्झी वञो त हीउ बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे हर क़रीबी जनरल स्टोर ते तव्हांखे मिले पई। उन खां अलावा अगरि न बि मिले पई त तव्हांखे नंबर ॿुधाईंदासीं जंहिं ते तव्हां राबितो करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था। ऐं मूंखे ईअं छो थो लॻे त अॼु मां तव्हांखे नंबर न आहे ॿुधायो, हा शायदि न आहे ॿुधायो। ओके, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे हीअ बाबा नाइट क्रीम आहे, सो हुनखे तव्हां राति जे टाइम इस्तेमालु कंदा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश मिली रहियो आहे। ऐं डी स्किन जे फेस वॉश जी ॻाल्हि कयूं त बाबा डी स्किन जो फेस वॉश त ॾाढो भलो आहे, वाह वाह सफ़ाई, तव्हांखे ईअं अहसासु थींदो त तव्हां केॾी न भली शइ इस्तेमालु करे रहिया आहियो। ऐं डी स्किन जो फेस वॉश जेको हाइलुरोनिक एसिड सीरम सां तयारु थियल आहे, तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट कंदो आहे, तव्हांजी स्किन खे मॉइस्चराइज़ कंदो आहे, तव्हांजी स्किन खे क्लीन कंदो आहे, डीपली क्लीन कंदो आहे। सो तव्हां बि लाज़मी डी स्किन जो फेस वॉश ट्राए करे ॾिसजो। ऐं नथो मिले त तव्हांखे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वञो, तव्हां मालूमात वठो, अगरि मिले थो त बढ़िया, नथो मिले त पोइ तव्हांखे डायल करणा आहे नंबर चई ॿुधायां पई। नंबर से तव्हां राबितो लाज़मी कजो, नंबर ते राबितो करण जा इहे फ़ाइदा हूंदा आहिनि त तव्हां उन्हनि खां मालूमात वठी सघंदा आहियो। तव्हां उन्हनि खे ॿुधाईंदो त बाबा फलाणी जॻह ते तव्हांजा प्रोडक्ट कोन था मिलनि, ऐं हू तव्हांखे गाइड कंदा त अगरि हिते नथा मिलनि त तव्हांखे हितां वञी वठणा आहिनि, या फिर हू तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते ई अवेलेबल कराए छॾींदा। सो नंबर आहे, नोट कयो ज़रा, 03-12-50-25-907 03-12-50-2

ऐं प्रोडक्ट तव्हां वठो बाबा इस्तेमालु कयो पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो अगरि तव्हां पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु न रखंदा त तव्हांजी स्किन बि ॾाढी ख़राब थी वेंदव ऐं तव्हां बि पंहिंजी उमिरि खां इलाही वॾा लॻंदा सो पंहिंजी स्किन जो ख़्यालु कयो पंहिंजे चहिरे जी हिफ़ाज़त कयो ऐं जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो

अरे छा तो चई अदो अगर बियो नंबर भी याद न थे त बियो को ऑप्शन टियो नंबर भी आए पर वो कुछ दिन खा पोई ताके बुधाइंदो याद न कयो ना बाबा ताके नोट करनो आ नंबर

ओगरी मामा सलमान भाई बिल्कुल आपका रिएक देख लिया, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। बाबा इन लाइ त चवां थी त बाबा तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी त तव्हां केॾा ख़ूबसूरत थी विया आहियो। ऐं उन खां अलावा अली अकबर बिरोही भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, प्रोग्राम ॿुधो पिया। वफ़ा शहज़ादो मक्सी हमारे साथ लाड़काना से आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। ऐसन कहते हैं खिलण ते पैसा मिलन त पोए खिलण ते पाबंदी हुजे, हाँ पाछो जो माण्हू असांखे अमीर थियण ॾींदा सोचो सभ खां पहिरियां साड़ोला माइट। वाकई वाकई इन ॻाल्हि में दमा बाबा, इहो त असां सोचो ई कोन हुयो। अजो ममदास कहते कि अदी सिदरा लगे तो तव्हां इहे क्रीमूं असांखे हणी भूरा करण चाहियो था।

आओ बाबा हाथ ही कोई रखो हाँ एस एम कहते हैं डी एस चवंदा आहिनि बिल्कुल बिल्कुल डी एस क्रीम ना आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ॾिसो मुंहिंजा लिसनर केॾा भला आहिनि सभु चीजू नोट कंदा आहिनि अच्छा सो बिल्कुल तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो नालो सही तरीक़े सां वठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वञी तव्हां वठी सघो था पाण क़रीबी जनरल स्टोर था उन खां अलावा नथा मिलनि त पोइ तव्हां नंबर ते राबितो कंदा रहो सही आहे उन्हनि जो जीअण हराम कयो उन्हनि खे ॿुधायो बाबा असां लॻाइण चाहियूं था डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले कोन थी पियो हिदायतुल्ला कहते हैं कि जो भूख रात को लगती है वो दिन में नहीं लगती और जो नींद सुबह के वक्त आती है वो रात को नहीं आती हाय मेरे निके निके

हाँ वाकई मूंखे ही नंबर जेके ॿुधायां पई सिंधी में यादि कोन्हे. मां यकीन कंदा रोज कोशिश कंदा त तव्हांखे सिंधी ॿुधाईंदमि, पर ई लॻे थो थोरा मुश्किल आहिनि. अच्छा ॾिसो ॾिसो बाबा, तव्हां बि ॾिसो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो. ममताज़ भाउ कहते डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमामु सुठी आहे. अॼु असां लाइ सॉन्ग हलायो फ़ाइज़ा अली. हाज़ुर हाज़ुर फ़ाइज़ा अली हलायूं था. अख़लाक़ भाउ बिल्कुलु शो नंबर बि आहे, उहो कुझु ॾींहंनि खां पोइ ॿुधाईंदव. ओके वासु भाई, आपको भी वेलकम कहा जाता है.

0: அதுக்குள்ள வடலா அபி சைஸ் எல்லாம் என்னதா காரி வந்து வசா
1: கஜாய மூதே ஓ லிக்கி சத முஜோ நம்பரடே
0: அதுக்குள்ள வடடன் கி பிள்ளை சாதி வயு அசான் சேஞ்சஸ் கி கோ சம்ஜே ஹி நதே आशिकली मला हमारे साथ फ्रॉम बकर अबड़ो सलाम जी वालेकुम अस्सलाम डेडिकेट कीजिए अली आजम अबड़ो गुलाम मुस्तफा अबड़ो और आजम अली बुगियो गाना तो आपने लिखा ही नहीं वेलकम कहा जाता है आपको और ये हमारे साथ हैं जी मोरोखा कामरान लगारी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर आप कैसी हैं माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे सिस्टर हमें सनम मारवी का सॉन्ग सुनाइएगा डेडिकेट इमरान लगारी और दरबन अली हमीर खान हक मौजूद जी सदा मौजूद खुश आमदीद कहा जाता है और जी हमारे साथ ही चाचा खाली तुम गाने जी फरमाइश कई तुम राशा कशा गानो हली राशा कशा बस हाँ तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम हने जी तैयारी पकड़ो रसूलाबाद से आबिद हुसैन शंबानी भाई वालेकुम अस्सलाम टॉपिक अदी पैसों की गिनती के लिए कोई और रख लेता मैं तो बस हंस हंस के पागल हो जाता सही गाल बाबा सही गाल अच्छा ये हमारे साथ है माँ भी करोड़पति हो जा हाँ मकसूद मलाह हमारे साथ है ओके जी मेहरापुर से मकसूद मलाह हमें सुन रहे हैं थैंक यू बशीर लिगारी गोठ मीर खान लिगारी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर तमा की आयो भामा सफा भलीता मुदा की आयो और ये हेलो आई एम जाकिर जख्मी बलोच फ्राम कोटड़ी कबीर जाकिर वरी जख्मी वरी बलोच भा खुश आयो नी और सजाद अली जमाली है नवाब शाह से सॉन्ग प्ले कीजिए मुमताज मोलाई पैसो डिठो थी हाजर हाजर हलाई होता ये कहते वैसे तो पैसा कोई देता नहीं लेकिन मगर कोई 10 रुपए भी दे दे तो मैं सारा दिन हंसता रहूंगा शहबाज जमाली कर दी ना छोटी बात डर पता जो कल बाहर भी नहीं था बेटे

0: वेंदो फिरो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो ऐं सुणा सुणा थी वञो टाइम थियो आहे बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेशन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हणो ऐं सुणा थियो
1: FM 88
2: सिंध की आवाज
3: फकीरी नीम प्रिकली
4: सखर के हो
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
6: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
7: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
8: सुनते रहो जी एफ एम 90.8

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।

बिलीव थोड़ा मुश्किल था। और ममताज भाई डे स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। और दीदार अली बिरोही हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? सोचा आपका हाल ही पूछ लूं। दीदार बिरोही लाल शाह बड़ी से। दीदार मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं?

बिल्कुल जी, जी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे तो आपका मुखड़ा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो अपने मुखड़े का जरा ख्याल रखिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से ये तो फायदा आपको हो ही जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के चेहरे पर जो है ये जितनी भी परेशानियां है, जितने भी मसले मसाले वो सारे दूर हो जाएंगे। और ये मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ, तो आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, तो दोनों चीजें साथ में लगाइए ताकि आप लोगों को खूबसूरती मिले, वो भी

लादुला कहते हैं वैसे आज सर्दी कैसी है लाड़का ना, मैं कराची में तो वडो सी आए, लाड़कानी में भी थोड़ा थोड़ा सी आ। नसरुल्ला भाई कहते हैं हाय अल्लाह केतरे डीएन का वही प्रोग्राम है उस्ताद जो गानो बुधो ता अच्छो द सही नहीं ताके रोज बुधराइंदा से। दीदार कहते हैं टॉपिक का आंसर है हंसने पर पैसे मिलते तो एक रुपया भी नहीं कमाता क्योंकि हमारे यहाँ हंसना मना है। अरे भाई कहाँ रहते हैं, कौन से जमाने में रह रहे हैं। चलिए जी खुश रहा करें और हंसते मुस्कुराते रहा करें, अच्छी बात होती है।

बिल्कुल सही जानी तो घुर्जे पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी घुर्जे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के नवसार जो ये न कजो ये न कजो ये न कजो अल्लाह सही डो नी न अच्छा अच्छा तो चो किशोर भाई उदासी में दबजी वही हुंदी सही था चो वाला ये लड़की इतना उदास रहती ना कि मैं सोचती हूं को भाई एक इंसान इतना उदास कैसे रह सकता है अच्छा वासु भाई हाँ जी बिल्कुल वठो था मोकल बाबा तकड़ शादी थो वे हो तो हाँ नसरुल्ला भाई कहते बाकी कुराड़ा है कुराड़ियों कारी वजन वे भी लगाए ना बिल्कुल बाबा सब लगाईंदा सबनी जिला टी स्किन ब्यूटी क्रीम आए कुराड़ा तो लाजमी लगाए जवान थी वेंदा

अच्छा मोदिया से थानी भाई वालेकुम अस्सलाम। हाले सुल्तान हमारे साथ है। हेलो स्वीटी, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं। हैप्पी, आपको भी वेलकम हो गया जी। आईली चौथा अज मुखे न चे जांदा 5 बजे च जांदा त लाजमी अच जो अच्छा नहीं, जिन लोगों के मैसेज नहीं पड़े ना तो वो ऊपर चले गए होंगे, तो आप समझ जाइएगा। डॉलर तो घुर्जे बाबा, फॉर्चूनर भी घुर्जे, जानी भी घुर्जे, जानी लास्ट में घुर्जे पेड़ा सब कुछ। अली मुर्तजा कहते हैं बुख लगे सही बुखार लगी वेन्दस हकीकत आवे अमी भी ये चवन दिया

0: बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ समझ जाऊँ, लेकिन वो क्या है ना कि मैंने ना मुनराई हूँ, देश का सिपाही हूँ, तो कुछ चीजें मैं नहीं समझती. आज हाँ मैंने ये परंपरा को तोड़ दिया कि लास्ट सैडी लिंक में हम सैडी गाने सुनेंगे. आज ऐसा नहीं हुआ, आज हमने अच्छे अच्छे गाने सुने. हाँ. देखिए कितना मजा आया. हाँ. लगी नहीं रहा कि प्रोग्राम खत्म हो रहा है. लेकिन खत्म हो चुका है. तो वरी तमाम से मिलूं था बाबा पंजी बजी वाले प्रोग्राम में. पंज बजी वारी प्रोग्राम में ज्वाइन कजो. ऐं उन खां अलावा किथे का ग़लती थी हुजे, कंहिंखे का ॻाल्हि बुरी लॻी हुजे, कंहिंजो गानो रहिजी वियो हुजे, त बाबा माज़रत कयूं था. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं वाइटी जा प्रोडक्ट्स तव्हां लाज़मी लॻाए ॾिजो. ऐं जीअं सुहिणा सुहिणा थियो, पाला पाला थियो, ऐं ख़ूबसूरती तव्हांखे काॾे बि छॾे न वञे. ठीकु आहे. सो पंजे बजे ज्वाइन कंदा, मोकिलाणी नाहे. सन सलामत, सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर.
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

0: रहे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बिलावल भुट्टो
2: यार कुजरियन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ इतरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण भी दुखियो लगे थो।
3: त पोए तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
3: न अदा, आसाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो।
1: त पोइ छा अञा ताई फकीरी एनल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
0: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
1: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सां तैयार कयल फकीरी एनल जैसे क्रीम मुतासिर हंद ते जल्दी जज़ब थी। सूर सोडियम जिस्म जी नसुन जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्जिश का पोए छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
0: इस्तेमाल किए कजे,
1: रुगो मुतासिर हंदते डीएम में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए ऐं आराम जो एहसास वच ऐं बुध, जेकरे उमरे या हजते वनन जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा।
0: वाह, पोए अजी वठींदस।
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी पांजे वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: डॉक्टर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GFM 88
3: नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Index Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: चाहे थी राजा परवेज अशरफ चयो त चूंड धांधलियुनि जो सिलसिलो हाणे बंद थियणु घुर्जे जायज़ शिकायतूं हल थियणु घुर्जनि असांजो मज़ाक उॾायो वेंदो त नतीजा बे निकिरंदा विच ओवर में नई जंग जी शुरूआत आयल रिफाइनरी ते हमलनि बाद सऊदी अरब जे अमेरिका सां गॾु इराक में कार्रवाई ईरान जे आर्मी ग्रुपन जे थाकन खे निशानो बणायो सऊदी अरब जे दिफ़ा वारी वज़ारत चयो आहे त आयल ते हमिलो कंदड़ ग्रुप्स खे निशानो बणायो आहे मुल्की सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तियारी ते को बि ठाह न थींदो अमेरिकी फ़ौज पारां बि इराकी ग्रुप्स ख़िलाफ़ कार्रवाई जी तसदीक कई वई इराकी विड़ाक ग्रुप हमलनि में 20 ॼणनि जे मारजण जी तसदीक करे छॾी ईरान जा उर्दन में अमेरिकी हलनि ते मिज़ाइल हमला उर्दन पारां पंज ईरानी मिज़ाइल नाकारा बणाइण जी दावा अमेरिकी फ़ौज पारां उर्दन में ईरानी हमलनि जी तसदीक अमेरिकी फ़ौज ईरानी हमलनि जी तसदीक कंदे चयो आहे त ईरान तर्फ़ां फायरल कयल समूरा मिज़ाइल दिफ़ाई निज़ाम रोकिया आहिनि ईरानी पासदार इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमेरिकी फ़ौजी अॾे ऐं सेनेट काम जे मर्कज़ी खे बैलिस्टिक मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे उर्दन चयो आहे त ईरान पारां फायर कयल पंज मिज़ाइल नाकारा बणाया विया

हैदराबाद में एसपीएससी जे इम्तिहानन में हेरा फेरी ऐं पंहिंजा नवाज़ी ख़िलाफ़ छह ॾींहं बे एहतजाज जारी। सैद ज़ैन शाह, नियाज़ कालाणी ऐं आमिर नवाज़ वड़ाइच जे एहतजाजी कैम्प आमद। कराची बार जे सदर आमिर नवाज़ वड़ाइच पारां 2 अगस्त ताईं एसपीएससी चेयरमैन ऐं मेंबर्स खे हटाइण जो अल्टीमेटम। आमिर नवाज़ वड़ाइच चयो आहे त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हाणे चोर कमीशन बणिजी वई आहे। कमीशन जे चेयरमैन ऐं मेंबर्स खे 2 अगस्त ताईं न हटायो वियो त 3 अगस्त ते वाधू वाह गेट वटि क़ौमी शाहराह ते धरणो हयो वेंदो। शागिर्द 200 ॾींहं बि एहतजाज कनि त केर बि नोटिस न वठंदो। जीअं ई रोड बंदि थींदो त 1 कलाक अंदरि हुकूमत जाॻी पवंदी।

0: शायरनि जे सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे 283 उर्स जूं तकरीबूं जारी। सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी मज़ार ते चादर चाढ़े उर्स तकरीबनि जो इफ़्तिताह कयो। सिक्योरिटीअ जा इंतज़ाम इंतिहाई सख़्त कया विया आहिनि। मुल्क जे कुंड कुड़ मां पांदी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

हैदराबाद में अचित पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान में हेरा फेरी है। पेजा नवाजी खिलाफ छह दिन भी एहतजाज जारी। सैयद जैन शाह, नियाज कालानी, आमिर नवाज बड़ाच एहतजाजी कैंप आमद। कराची पार के सदर आमिर नवाज बड़ाच पारा 2 अगस्त ताई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन ए मेंबर्स के हटाने जो अल्टीमेटम आमिर नवाज बड़ाच है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हाँ चोर कमीशन बढ़ी वही है। कमीशन के चेयरमैन ए मेंबर्स के 2 अगस्त ताई न टाए वो 3 अगस्त से वाधू वाह गेट वट कौमी धरणो हयो हों। शागिर्द 200 डी भी एहतजाज कन तक केर भी नोटिस न पटो। जी ही रोड बंद तो 1 कलाक तक हुकूमत जागी पवंदी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
2: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
1: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
2: न अदा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GAFM 88
3: नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

0: वो जाना चिकन नादा कि कुछ चाहती है और इतना डरता हूँ कि मिलने से दिल कहीं तुम खो ना जाओ और अब दिल से सिर्फ यही आवाज आती है यही आवाज आती है
1: आंखों में बस जाओ दिल में समा जाओ ना।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियो चायो कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन खेडियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: जो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
0: GFM 90.8।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: ना पंजाब कर सकता है, ना सिंध कर सकता है, ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पख्तूनख्वा, ना बलूचिस्तान कर सकता है. कश्मीर का फैसला मुजफ्फराबाद करेगा, कश्मीर का फैसला मीरपुर करेगा, और कश्मीर का फैसला पूंछ और रावलाकोट करेगा.
5: नवाज शरीफ पहिरियों भेरो वॾो वज़ीर धांधली ज़रिए बणियो. पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म यसर ख़ान केस जे करे थियो, टियों भेरो वज़ीर आज़म आर ओ इलेक्शन सबबु बणियो. अॼु बि खेनि वज़ीर आज़म ऐं वज़ीर अला जी कुर्सी फॉर्म 47 सबबु मिली आहे. बच्चो ॼाणे थो त ही नसल दर नसल धांधली जी पैदावार आहिनि. हुननि खे कश्मीर में धांधली करणु न ॾींदासीं. बिलावल भुटो सरदारी जा मुज़फ़्फ़राबाद में नवाज़ शरीफ ते वार. चूंड जलसे खे ख़िताबु कंदे बिलावल भुटो सरदारी चयो त ही मुज़फ़्फ़राबाद आहे, श्रीनगर न. अव्हांखे धांधली करणु न ॾींदासीं. ही चवनि था त कश्मीर खे पंजाब बणाए छॾींदासीं. तानो ॾियनि था त कश्मीर खे सिंध बणाए छॾियो, पर मां कश्मीर खे कश्मीर ई ॾिसणु चाहियां थो. कश्मीर जो फ़ैसिलो इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा या बलूचिस्तान न, पर कश्मीरी पाण ई कंदा. कश्मीर जो फ़ैसिलो मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर, रावलाकोट ऐं पूंछ खे करणो आहे.

0: धांधलियुनि जी माहिर पीपल्स पार्टी धांधलियुनि जूं ॻाल्हियूं करे रही आहे। ॿुधायो वञे त क़यामत कहिड़े वक़्तु ईंदी। पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ जी पीपल्स पार्टी ते टोक। नवाज शरीफ जी हां, मरियम नवाज पी चोर दरवाजे खां इक़्तदार में आई आहे। मरियम नवाज जाली मैंडेट ज़रिए सीटूं हासिल करे वज़ीर आला थी आहे। हाणे घणो थियो, नवाज लीग खे धांधली करण न ॾींदासीं। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील ना मेमण जो मरियम नवाज खे जवाब। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त मरियम नवाज तव्हां न पर फॉर्म 47 जो नशो ॻाल्हाए रहियो आहे। क़यामत 2024 में आई हुई जॾहिं अव्हां खे ख़ैराती मैंडेट ॾिनो वियो। नून लीग आज़ाद कश्मीर में बि धांधली ज़रिए इक़्तदार माण चाहे थी। राजा परेश चयो त चूंड धांधलियुनि जो सिलसिलो हाणे बंदि थियणु घुर्जे, जाइज़ शिकायतूं हल थियणु घुर्जनि। असांजो मज़ाक उॾाए वेंदो त नतीजा बि निकिरंदा। विचोभर में नई जंग जी शुरूआत। आयल रिफाइनरीज ते हमलनि बाद सऊदी अरब जे अमरीका सां गॾु इराक में कार्रवाई। ईरान जी हामी ग्रुपनि जे ताक़त खे निशानो बणायो। सऊदी अरब जे दिफ़ा वारी वज़ारत चयो आहे त आयल रिफाइनरीज ते हमिलो कंदड़ ग्रुप्स खे निशानो बणायो आहे। मुल्की सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तारी ते को बि ठाह न थींदो। अमरीकी फ़ौज पारां बि इराकी ग्रुप्स ख़िलाफ़ कार्रवाई जी तस्दीक कई वई। इराकी विराक ग्रुप हमलनि में 20 ॼणनि जे मारजण जी तस्दीक करे छॾी। ईरान जा उर्दन में अमरीकी अॾनि ते मिसाइल हमला। उर्दन पारां 5 ईरानी मिसाइल नाकारा बणण जी दावा। अमरीकी फ़ौज पारां उर्दन में ईरानी हमलनि जी तस्दीक। अमरीकी फ़ौज ईरानी हमलनि जी तस्दीक कंदे चयो आहे त ईरान तर्फ़ां फायर कयल समूरा मिसाइल दिफ़ाई निज़ाम रोकिया आहिनि। ईरानी पासा इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अॾे ऐं सेंट कॉम्प जे मर्कज़ खे बैलिस्टिक मिसाइल सां निशानो बणायो आहे। उर्दन चयो आहे त ईरान पारां फायर कयल 5 मिसाइल नाकारा बणाया विया। ईरान आपना हरमुज़ जे इंतज़ाम बाबति इलाक़ाई निज़ाम जोड़ण वारी तजवीज़ रद्द करे छॾी। आपना हरमुज़ में 3 धुर जी शमूलियत क़बूलण खां इनकार। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीबाबादी चयो आहे त उमान जे अपनाए हरमुज़ खे ॿिनि मुल्कनि में हिकु जेतिरो विराइण वारी तजवीज़ रद्द कई आहे। ईरान जे हथनि सामूंडी रस्तनि जी ज़िमेवारी तेहरान ऐं उमान पंहिंजे सामूंडी हथनि जी ज़िमेवारी संभाले सघे थो। उमान ईरान जो अपनाए हरमुज़ बाबति मनसूबो रद्द कयो त हरमुज़ बंदि ई रहंदो। कोइती परॾेही वज़ीर शेख जरा अल अहमद अल सबा जी नायब वज़ीर आज़म सागदार सां मुलाक़ात। ॿिन्ही मुल्कनि विच में वापार, सीड़पकारी ऐं दिफ़ाई सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। परॾेही खाते पारां जारी कयल बयान में चयो आहे त मुलाक़ात दौरान पाक कोइत लाॻापन समेत वितरफ़ी सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ॿिन्ही अॻवाणनि ख़िते जी सूरतयाल ऐं सिफारती कोशिशुनि जो बि जाइज़ो वरितो। कोइती परॾेही वज़ीर ख़िते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जी कोशिशुनि जी साराह कई। خیبر پختونخوا ایں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی۔ 32 دہشت گرد مارجی ویا۔ آئی ایس پی آر موجب خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں آپریشن دوران 24 دہشت گرد ماریا گیا۔ بلوچستان کے علاقے نوشکی میں آپریشن دوران 8 دہشت گردن کے جنم بیڑو کئی ہو۔ مارجی ویل دہشت گردن وٹا ہتھیار بارودی مواد حد کیا ہو۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، گھر وزیر محسن نقوی بین پارا دہشت گردن خلاف کامیاب کارروائی کے فورسز کے بھیٹا پیش۔ آزاد کشمیر کے شہر راولا کوٹ میں پابندی بڑھل تنظیم فورسز ہیں پولیس تے حملہ کیا۔ شہرین کی ملکیتن کے بھی نقصان پہنچایا۔ کئی بھی جتھے کے فورسز ہیں پولیس تے حملے کی اجازت نہ دی۔ آزاد کشمیر کی پولیس ترجمان چیا ہے تا یہ پرامن تحریک نہ پر ہتھیار بندن جو جتھو بنجی چکی ہے۔ پولیس ہیں فورسز تے حملہ کرے رہا ہے۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ, अनिया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
3: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के चले दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: यार कुछ डीहन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
2: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
2: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थेल हंद ते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी
1: सिर्फ चेल ही सूर लाए
2: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे
1: इस्तेमाल किए कजे
2: मुतासिर थेल हंद ते डी में ब खां टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करियो जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8

मुजी अब्दुल सत्तार भयो चवे। शामराद मिदरी खास फरमाश ऐं दिलमुराद मिदरी खास फरमाश ऐं मुदसर मिदरी शहर सिबिका।

0: रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: पहचो शहर पहचो घर सकरण आए सकरण जो आवाज
2: जी एफ एम 90.8 फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: vége, Tesla, pucs, a rablakorka vége.
1: बच्चों बच्चों जाने तो होता ही नस्ल दर नस्ल धांधली जी पैदावार रही है नवासे पहरियों पहरों वडो वजीर धांधली सरी बढ़े हो पहरियों पहरों वजीर आजम भी असकर खान केस जे करे थे हो क्यों पहरों वजीर आजम आरो इलेक्शन सबब बढ़े हो अज भी कैन वजीर आजम है वजीर अल्लाह जी कुर्सी फॉर्म 47 सबब मिली है वदन के कश्मीर में धांधली करण नदीदासी बिलावल भुट्टो सरदारी चा मुजफ्फराबाद में नवाज लीग ते वार चूंड जलसे के खिताब कंदे बिलावल भुट्टो सरदारी चो त ही मुजफ्फराबाद आए श्रीनगर न अवां के धांधली करण नदीदासी ही चवन था त कश्मीर के पंजाब बणाए छॾींदासीं तानो ॾियनि था त कश्मीर के सिंध बणाए छॾियो पर मां कश्मीर के कश्मीर ई ॾिसणु चाहियां थो कश्मीर जो फैसलो इस्लामाबाद पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान न पर कश्मीरी पाणी कंदा कश्मीर जो फैसलो मुजफ्फराबाद मीरपुर रावलाकोट ऐं पूंछ खे करणो आहे धांधलियन जे ॿाहिरि पीपल्स पार्टी धांधलियन जूं ॻाल्हियूं करे रही आहे ॿुधायो वञे त क़यामत कहिड़े वक़्तु ईंदी पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ ई पीपल्स पार्टी ते टोक
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: हर चप्पा हर गोशा
4: जीए एफएम 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए

0: मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
0: झुरियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: Hiring at

0: हेलो
1: है नायल, आर यू फ्री? कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहे थे ना?
0: नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, बोलो।
1: असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से नोट्स पिक करने हैं। कैन यू प्लीज टेक मी देयर?
0: हाँ, तुम बस रेडी हो जाओ, मैं आ रहा
1: हूँ। यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो।
0: सी यू।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट। सुबुह

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, Sojan, Varam, Fauri Khatam. Aaj hi karibi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: से मुनीर जो चवण आए थे पाकिस्तान कुवैत सां पंहिंजे तामीरी लागापन के इंतहाई अहमियत दे तो पाकिस्तान ऐं कुवैत जो इलाकाई अमन ऐं खुशहाली लाइ गडियल मौक़िफ़ आहे। अमरीकी सदर एक भेरो बीहर ईरान ते वॾनि हमलनि जो ऐलान करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अॾे ते हमले जे जवाब में ईरान ते शदीद हमिलो कयो वेंदो। अमरीकी फ़ौज वटि ओचितो हमले जो जवाब ॾियण लाइ रुगो कुझु मिंटनि जो वक़्तु हो। ईरान जो अहिड़ो हशर कयो वेंदो जो यादि रखंदो। वॾे ख़बरू इदारे फॉक्स न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जे हामी वड़ाकनि ख़िलाफ़ बि कार्रवाई जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। इराक में ईरानी प्रॉक्सीज़ दुनिया लाइ नासूर बणियल आहिनि। उन्हनि ख़िलाफ़ वधीक हमलनि ते बि ग़ौर कयो पियो वञे।

0: Kas virkapätslä, putsch, on ravlakoonkäneiga.
1: बच्चों बच्चों जाने थो तो ही नस्ल दर नस्ल धांधली जी पैदावार आहे नवासी पेरियो फेरो वडो वजीर धांधली जरिए पणियो पेरियो फेरो वजीर आजम डी असगर खान केस जे करे थियो जो वेरो वजीर आजम आरो इलेक्शन सबब पणियो अज भी केन वजीर आजम ए वजीर ला जी कुर्सी फॉर्म 47 सबब ए मिली आहे उनन के कश्मीर में धांधली कर डरिंदासी बिलावल भुट्टो सरदारी जा मुजफ्फराबाद में नवाज लीग ते वार चूंड जलसे के खिताब कंदे बिलावल भुट्टो सरदारी चयो त ही मुजफ्फराबाद आहे श्रीनगर न अवां के धांधली कर डरिंदासी ये चवन था त कश्मीर के पंजाब बणाए छॾींदासीं तानो ॾियनि था त कश्मीर के सिंध बणाए छॾियो पर मां कश्मीर के कश्मीर ही ॾिसण चाहियां थो कश्मीर जो फैसलो इस्लामाबाद पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान न पर कश्मीरी पाण ई कंदा कश्मीर जो फैसलो मुज़फ़्फ़राबाद वीरपुर दावलाकोट ऐं पूंछ खे करणो आहे
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
6: पहचो शहर पहचो घर सकरंट आए सकरंट जो आवाज
4: जी एफ एम 90.8

0: क्योंकि मैं क्रीन हूं।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ
2: आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: kas viilkapätsla, putsch on ravlakoolkaneiga.
1: बच्चों बच्चों जाने थो तही नसल दर नसल धांधली जी पैदावार आहन नवासे पेरो भेरो वडो वजीर धांधली जरिए बनियो पेरो भेरो वजीर आजम भी असगर खान केस जे करे थियो जो भेरो वजीर आजम आरो इलेक्शन सबब बनियो अज भी खेन वजीर आजम आई वसेला जी कुर्सी फॉर्म 47 सबब भी मिली है हिनन के कश्मीर में धांधली करण डींदासीं बिलावल भुट्टो सरदारी जा मुजफ्फराबाद में नवाज लीग ते वार चूंड जलसे के खिताब कंदे बिलावल भुट्टो सरदारी चयो त ही मुजफ्फराबाद आहे श्रीनगर न अवां के धांधली करण न डींदासीं ही चवन था त कश्मीर के पंजाब बणाए छॾींदासीं तानो ॾियनि था त कश्मीर के सिंध बणाए छॾियो पर मां कश्मीर के कश्मीरी ॾिसण चाहियां थो कश्मीर जो फैसलो इस्लामाबाद पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान न पर कश्मीरी पाण ई कंदा कश्मीर जो फैसलो मुज़फ़्फ़राबाद मीरपुर रावलाकोट ऐं पूंछ खे करणो आहे धांधलियन जी माहिर पीपल्स पार्टी धांधलियन जूं गालियूं करे रही आहे ॿुधायो वञे त क़यामत कहिड़े वक़्तु ईंदी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ी पीपल्स पार्टी ते टोक

ही तव्हां न पर फार्म 47 जो नशो ॻाल्हाए रहियो आहे। क़यामत 2024 में आई हुई जॾहिं अव्हां खे ख़ैराती मैंडेट ॾिनो वियो हो। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो मरियम नवाज़ खे जवाब। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त नवाज़ शरीफ जीअं मरियम नवाज़ बि चोर दरवाज़े खां इक़्तदार में आई आहे। मरियम नवाज़ अली मैंडेट ज़रिए सीटूं हासिल करे वज़ीर अला थी आहे। नून लीग आज़ाद कश्मीर में बि धांधली ज़रिए इक़्तदार मरण चाहे थी, पर असां ईअं थियण न ॾींदासीं। अॻूणे वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ चयो त चूंडनि में धांधली जो सिलसिलो हाणे बंदि थियणु घुर्जे, जाइज़ शिकायतूं हल थियणु घुर्जनि। असांजो मज़ाक उॾायो वेंदो त नतीजा बि निकरंदा। इस्लामाबाद जे दौरे ते आयल कुवैती परडे॒ही वज़ीर शेख जराब जाबर अल अहमद अल सबा जूं वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल सां धार धार मुलाक़ातूं। गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि, इलाक़ाई सलामती ऐं बितरफ़ी सहकार ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। मुलाक़ातनि दौरान बितरफ़ो सहकार वधीक मज़बूत बणाइण जे अज़म जो वर्चाउ। कुवैती परडे॒ही वज़ीर इलाक़ाई अमन लाइ पाकिस्तान जे तामीरी किरदार खे साराहियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ कुवैत जे अमीर ऐं वली अहद लाइ नेक ख़्वाहिशनि जो इज़हार कंदे

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: शर पसंद देखिए हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली पाकिस्तानी प्रोडक्ट फाइजर ब्यूटी क्रीम.
2: सोलर है बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखंजे मुकाबले में जबरदस्त हवा. रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर.
3: गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान.
4: गिब्स पास्ता
5: पूरे 50 रुपए की बचत के साथ. लाइफ बॉय शैम्पू कुदरती मजबूती का न्यू लुक.
6: सुंडियो डरी बनो लामा जी.
7: दासी ही चवन था तो कश्मीर के पंजाब पढ़ाए छदासी तानो डियन था तो कश्मीर के सिंध पढ़ाए छो पर मां कश्मीर के कश्मीर ही दिसन चाहिया तो कश्मीर जो फैसलो इस्लामाबाद पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान नफर कश्मीरी पाणी कंदा. कश्मीर जो फैसलो मुजफ्फराबाद मीरपुर रावला कोट ए पूंच के करणो है. धानगिरन की माहिर पीपल्स पार्टी धानगिरन जो गालू करे रही है बुधायो वजे तो क्यामत कड़े वक्त इंदी बजे अला पंजाब मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी से टोक.

ही तव्हां पर फॉर्म 47 जो नशो ॻाल्हाए रहियो आहे। क़यामत 2024 में आई हुई जॾहिं अव्हांखे ख़ैराती मैंडेट ॾिनो वियो हो। सिंध जे सीनियर वज़ीर शजील राम मेमण जो मरियम नवाज़ खे जवाब। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शजील राम मेमण चयो आहे त नवाज़ शरीफ़ जीअं मरियम नवाज़ बि चोर दरवाज़े खां इक़्तदार में आई आहे। मरियम नवाज़ 40 मैंडेट ज़रिए सीटूं हासिल करे फज़ीला थी आहे। नून लीग आज़ाद कश्मीर में बि धांधली ज़रिए इक़्तदार माण चाहे थी, पर असां ईअं थियण न ॾींदासीं। अॻोणे वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ़ चयो त चूंडनि में धांधलियुनि जो सिलसिलो हाणे बंदि थियणु घुरिजे। जायज़ शिकायतूं हल